आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रीक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण

0: समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction, for leadership in environmental conservation and sustainable development. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State UT Police at 5 p.m. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The Supreme Court today refused an urgent hearing on a PIL seeking a court-monitored probe and forensic audit into alleged financial irregularities and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. The bench of Justices M.M. Sundaresh and Sheel Nagu questioned the urgency and directed that the plea be listed after the court reopens following the summer vacation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece. After concluding his visit to the United Kingdom,

Grande. लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी कल्पना और आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़ पर भी। और दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हमारे पास आपके लिए एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि आपने सबसे पहली भारतीय डिश क्या बनाई और उस पे आपको क्या मजेदार कमेंट मिला था। हमें भेज दीजिए अपने उत्तर। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। और दोस्तों, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से दोहे के साथ। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हुए। यानी हमें सदैव ऐसी बातें करनी चाहिए,

ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिन्हें सुनकर दूसरे लोग खुश हों और हम भी खुश हों। आज है संत कबीरदास जी की जयंती और उनके विचार आज भी हमें सत्य, समानता और मानवता का मार्ग दिखाते हैं। कबीर के दोहे केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की सीख है। समय का सदुपयोग, आत्मचिंतन, गुरु का सम्मान और मधुर वाणी का महत्व, उनकी ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। सच है ना, हम उनकी सीखों से रोजमर्रा के जीवन में ऐसे बंधे हैं कि उन्हें भूलना या उनसे दूर जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है।

दोस्तों ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे धरती कहे पुकार के फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और मुकेश ने। और चलिए देखते हैं कि हमारे किसी श्रोता ने हमें ईमेल किया है क्या। जी हाँ बिल्कुल, नवीन भाटिया जी हमारे नियमित श्रोता हैं और उन्होंने हमें ईमेल किया है कि दाल चावल बनाए थे और डैडी ने काफी पसंद किया था और हम दोनों ने काफी चाव से खाया था। अरे वाह, तो जल्दी से आप भी दोस्तों जो आप कार्यक्रम अभी जिसने सुनना शुरू किया है वो भी, उनके लिए प्रश्न ये है, आपको याद दिला दूं कि भाई आपने पहली भारतीय डिश जो है वो क्या बनाई थी और उस पर आपको क्या मजेदार कॉमेंट्स मिले थे, तो वो आपको हमें ईमेल करना है fmgoldga@gmail.com पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक शेर सुनाती हूँ कि जिस घर में एक स्त्री हिम्मत से खड़ी रहती है वहाँ उम्मीद हर मुश्किल से बड़ी रहती है। जी हाँ दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी स्त्रियों के अपने कठिन संघर्ष रहे हैं, लेकिन उन संघर्षों से जूझते हुए हर युग में स्त्रियों ने खुद को मजबूती से स्थापित किया है। एक समय था जब स्त्रियां शिक्षा से भी वंचित रहीं और तब भी उन स्त्रियों ने पूरी मेहनत, लगन और समर्पण के साथ अपना घर संभालना सीखा। लेकिन जब समय बदला और स्त्रियां

शिक्षा प्राप्त करने लगी, आत्मनिर्भर बनने लगी, तब इन स्त्रियों ने संभाला अपना घर भी और दफ्तर भी, बिना कहीं कमजोर पड़े पूरी क्षमता से दोनों जगह 100% जिम्मेदारी निभाई। यानी इन स्त्रियों ने एक के बाद दूसरी फिर तीसरी जिम्मेदारी संभालने का साहस किया। उन्होंने कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपने सीखने का क्रम बढ़ाया, अपनी क्षमताएं बढ़ाई।

दोस्तों अभी आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे पड़ोसन फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और आशा भोसले जी ने। तो चलिए आज आपको एक बहुत अच्छी सी जानकारी देती हूँ, जिसे सुनकर निश्चित रूप से आपको गर्व महसूस होगा। ये राजस्थान के एक गांव की कहानी है। उस गांव ने ये साबित कर दिया कि बेटी जीवन की हरियाली है, घर की फुलवारी है और आंगन की तुलसी है। राजस्थान के पिपलांत्री गांव के श्याम सुंदर जी ने बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाकर बेटी के जन्म पर पौधे लगाने की परंपरा का सूत्रपात किया। तो गांव के अन्य लोग भी इससे जुड़े। ये पहल सिर्फ पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं, बल्कि बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने की सोच भी बनी। समय के साथ इस परंपरा के कारण ही लगभग 3 लाख से अधिक पेड़ लगाकर गांव वालों ने गांव की बंजर जमीन को हरा भरा बना दिया, जिससे बरसात और पानी का स्तर भी सुधरा। और देखो ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम पहल चलाकर हम सबको प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दिया। और मुझे तो यही लगता है कि शायद असली नारी सशक्तिकरण यही है, जब बेटियों का महिलाओं का सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। और मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं कि माता पिता की जान है अभिमान बेटियां, ईश्वर का सबसे कीमती वरदान बेटियां, शोभा है दो कुलों की ये बोझा न मानिए, देते हैं भाग्य वालों को भगवान बेटियां।

दोस्तों ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे कभी कभी फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने। और आइए आप फिर से हम चेक कर लेते हैं भाई, हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं तो हमें मेल कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं। ये ईमेल भेजा है गौरव खारी जी ने, वो लिखते हैं, मैंने सबसे पहले भारतीय खाने में आलू के पराठे बनाने की कोशिश की थी जो कि सिर्फ मैं अकेला ही खा पाया। कोई बात नहीं, कई बार ऐसे अनुभव भी हो जाते हैं कि फिर बाद में अच्छा बनने लगता है, शुरुआत में तो थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है। चरणदास जी लिखते हैं, ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, और ये भी लिखते हैं कि भारतीय खाना खाकर इनको बड़ा मजा आता है और बनाने का तो इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, पर चलिए धन्यवाद आप जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भावना शर्मा जी लिखती हैं कि मैंने पहली बार शाही पनीर बनाया था, फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने मुझे गाइड किया था और सबकी मम्मी शिकायत करती है मेरे पापा ने मुझे खाना बनाना सिखाया था। कितनी अच्छी बात है ना कि आपने पापा से खाना बनाना सीखा। वैसे आजकल तो कुकिंग हर कोई करता है। भास्विता लिखती हैं कि मैंने पहली डिश कढ़ी बनाई थी, बोलते हैं कि मुश्किल होती है पर बना दी थी मैंने और अच्छी बनी थी, ऐसा खाने वाले बोल रहे थे। अरे वाह, आपको बहुत बधाई, आपने पहली बार में ही बढ़िया बना दी। और ये आताशी गोयल हैं, लिखती हैं कि शुरुआत भले छोटी थी लेकिन मेहनत और अपनापन इतना था कि पहली चाय ने ही सबका दिल जीत लिया। चलो भाई, आपने चाय बनाई बहुत अच्छी बात है और सबका दिल जीता ये उससे भी अच्छी बात है। भूमिका जी लिखती हैं, जब मैं छोटी थी तो मेरे गाँव घर के बगल में एक दादी रहती थी, मैंने सबसे पहले उनके यहाँ चूल्हे पर परांठा बनाया था, लेकिन गलती है कि मुझे बनाना नहीं आता था तो मैं उसे रोटी की तरह सेकने लगी जिससे मुझे डांट पड़ी, लेकिन बाद में सीख गई, अब मैं आलू के पराठे काफी अच्छे बनाती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, चलो अब आप सीख गई। तो ऐसे ही हमारे अन्य श्रोता, देखिए राधा शुक्ला जुड़ी है तो वो भी कह रही कि भाई हमने दाल चावल बनाया था, तो लग रहा है दाल चावल और आलू के

पराठे बनाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो बढ़िया है, आप जो लोग जुड़े हैं, जो सुन रहे हैं हमारे अन्य श्रोता, वो भी हमें ईमेल करें और भेज दें कि भाई उन्होंने पहली भारतीय डिश क्या बनाई थी, हमें ईमेल कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। और तब तक आपको सुनाती हूँ ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे हीर रांझा फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। तन्हाई में करनी तो है एक बात किसी से, लेकिन वो किसी वक्त अकेला नहीं होता। तो दोस्तों, कभी कभी थोड़ी देर के लिए एकांत भी चुनना जरूरी है, ताकि खुद को समझा जा सके, खुद से बातें की जा सके। और शायद यही कारण है कि आज के युवाओं को रूम रॉटिंग भारी है। युवाओं के लिए छुट्टी का मतलब अब भागदौड़ नहीं, बल्कि रुकना और आराम करना हो गया है। रूम रॉटिंग में युवा करते हैं आराम। चलिए बताती हूँ कि ये होता क्या है। किसी शांत जगह पर आराम करते हैं, देर तक बिना किसी दबाव के सोते हैं, बाहर जाने का दबाव नहीं लेते, बिना प्लान के दिन बिताते हैं, हल्की फुल्की बातें करते हैं और अपना मनपसंद खाना खाते हैं। आजकल के युवा बहुत तनाव, चुनौतियों और मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। ऐसे में रूम रॉटिंग वाली छुट्टी उनके रिकवरी मोड को ऑन कर उन्हें आगे बेहतर करने के लिए तैयार करती है। और कितनी अच्छी बात है कि वे कुछ देर खुद के साथ रहते हैं, बिना दबाव के जीते हैं, शांत रहते हैं और सबसे जरूरी की फोन और सोशल मीडिया से भी दूरी बना लेते हैं, कुछ घंटे बस खुद के। अच्छी बात तो ये है कि ये युवा प्राकृतिक जीवन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, हर बात में रील फोटो के लिए नहीं रुकते, बल्कि असली पल जीते हैं। कभी बालकनी में घंटों बैठ नजारे देखते हैं, कभी खुद से मनपसंद खाना बनाते हैं, कभी कुछ एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं, तो कभी बस बगीचे की सैर से खुश हो जाते हैं। खुद के साथ खुश रखने का ये ट्रेंड खुद से कुछ कहने सुनने का भी अवसर देता है। कुछ हमको

श्रोताओ, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म अलग अलग से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी ने। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ श्रोताओं के ईमेल और पढ़ते हैं। गौरी शंकर वर्मा जी ने हमें मेल किया है कि कल्पना बेटा राम राम सन 1974 की बात है, मैं और मेरी बड़ी बहन ने मिलकर हलवा बनाया। माँ कहीं गई हुई थी लेकिन वो खराब हो गया, बाद में फिर माँ ने सिखाया बस अब तो केवल हलवा बना सकते हैं और कोई चीज नहीं। कोई बात नहीं, आप हलवा बनाते हैं तो क्या हुआ, आप मिठास बांटते हैं, ऐसे ही बांटते रहिए। अगले हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं, उग्रसेन यादव जी हैं और वो लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा है, सॉन्ग सिलेक्शन भी अच्छा है और खाने पीने की बात का तो ये हिट प्रोग्राम है। थैंक यू, आप जुड़े हुए हैं। अक्षिका गोयल ने हमें लिखा है, इन्होंने कुछ शायराना अंदाज में लिखा है कि पहली चाय थी पर यादगार बन गई, मेहनत और प्यार से हर घूट खास बन गई, बहुत अच्छा। और ज्ञानेन्द्र दीक्षित जी हैं, वो हमें लिखते हैं कि डिश का नाम मटर पनीर, सबको बहुत पसंद आई थी और मेरी माता जी को सबसे ज्यादा, क्या कहने। और हमारी जो रेगुलर लिसनर हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, वो कह रही हैं कि भाई घर आंगन प्रोग्राम उन्हें अच्छा लग रहा है और कह रही हैं हमने भी सबसे पहले सूजी का हलवा बनाया था और सबने स्वाद से खाया था। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं और अपने विचार हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं। हमारे जो अन्य श्रोता हैं वो भी हमें बताएं कि उन्होंने अपनी पहली भारतीय डिश कौन सी बनाई थी और उन्हें क्या कमेंट मिला था, हमें भेज दीजिए fmgold@gmail.com पर। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। घर आंगन कार्यक्रम के माध्यम से हम सिर्फ आपसे मनोरंजक बातें, मधुर की संगीत ही नहीं बल्कि आपकी फिक्र भी करते हैं और इसीलिए नई नई काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप रहें सुरक्षित। तो गर्मी का मौसम है तो ऐसे में कई बार हमारा मोबाइल ओवरहीट हो सकता है जिससे हम किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें और हम भी, इसके लिए कुछ आसान से उपाय आपको बताती हूँ, छोटे छोटे जो करने हैं। आजकल के फास्ट चार्जर जो हैं वो मोबाइल को जल्दी चार्ज तो करते हैं लेकिन बहुत गर्म भी कर देते हैं। ऐसे में फोन को किसी मोटे रबर या लेदर कवर में ढककर बिल्कुल चार्ज न करें बल्कि कवर से निकाल कर चार्ज करें ताकि हीट बाहर निकल सके। नेविगेशन के लिए फोन को सीधे धूप के संपर्क में न रखें, यदि ज्यादा देर रखना पड़े तो ऐसे में एसी वेंट वाले फोन होल्डर आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जब जरूरत नहीं हो तो वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और अन्य जो सेवाएं हैं वो बंद रखें, इससे फोन पर दबाव कम पड़ता है। साथ ही ऑटो ब्राइटनेस मोड ऑन रखें और गेमिंग जो है हैवी गेमिंग उससे बचें। फोन जरूरी चीज है, इसके बिना काम तो नहीं चल पाता लेकिन इसे अपनी जिंदगी में शामिल करें पूरी सावधानी के साथ।

श्रोताओं, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे हिमलता की आवाज में, फिल्म आप तो ऐसी ना थी। और वैसे तो गर्मी की छुट्टियों में सब कहीं ना कहीं घूमकर आ चुके हैं, लेकिन अगर आप नहीं गए हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप आम के शौकीन हैं, तो दिल्ली हाट जनकपुरी में 3 जुलाई से 5 जुलाई 2026 लगने वाला है मैंगो फेस्टिवल, जहाँ पर न सिर्फ आम की विभिन्न किस्में मिलने वाली है, बल्कि आम से बने अलग अलग शेक्स, डेजर्ट्स, स्ट्रीट फूड और कैंडी भी होंगी। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और हस्त निर्मित सामान भी होगा, जो आप खरीद सकते हैं। समय है दोपहर 12 बजे से रात के 9 बजे तक। तो 10 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं

के लिए एंट्री फ्री है, बाकी सबके लिए 20 रुपए टिकट है। तो परिवार सहित एक बार घूम कर आइए, जनकपुरी ईस्ट उसका निकटतम मेट्रो स्टेशन है अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो। इसके अलावा एक और सूचना यह है कि साथ ही अगर आप ब्यूटी पार्लर या स्किन केयर व्यवसाय से जुड़े हैं या इनमें रुचि रखते हैं तो प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 29 यानी आज और 30 जून दो दिन सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक लगा है ब्यूटी एक्सपो, जहां पर मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर के लाइव डेमो सेशंस होंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, साथ ही ब्यूटी उद्योग से जुड़े प्रोफेशनल्स से भी आप मिल सकते हैं। यहां पर एंट्री के लिए आपको 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क काउंटर पर ही देना होगा। तो जाइए और अपने हुनर को तराशिए ताकि किसी की खूबसूरती में आप चार चांद लगा सकें।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे लम्हे फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। और आइए अब बात करेंगे इंडियन सुपर फूड के नाम से पहचान बनाने वाले मीठे रसीले फूल महुआ की। पहले पहल आदिवासी समुदायों द्वारा इसे उपयोग किया जाता था और आज ये महुआ उन परिवारों की आजीविका भी बन रहा है। हाँ, हम लोग थोड़ा थोड़ा इससे दूर हो चुके हैं, लेकिन अब समय है इसके पास जाने का और इसे अपनी प्लेट तक लाने का। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगलों में मिलने वाला ये फूल अब पारंपरिक उपयोग से आगे पहचान पा रहा है। आदिवासी समुदाय, ग्रामीण स्त्रियां और स्वयं सहायता समूह इसकी मदद से लड्डू, सिरप, कुकीज और अन्य उत्पाद जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। महुआ के फूल, फल, तेल और छाल सहित लकड़ी के भी अपने अलग अलग और विशेष लाभ हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार देने का काम किया है और खास तौर पर इससे लाभान्वित हो रही हैं हमारी महिलाएं और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। साथ ही जंगल की जो ये उपज है अब जो है ये आधुनिक बाजारों तक भी पहुंच रही है, तो लोगों में भी स्वदेशी उत्पाद खरीदने की जो भावना है वो प्रबल हो रही है। जंगल के इस मीठे मीठे फूल की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। और अब इस मीठे फूल की जानकारी के बाद हम सुनेंगे एक मीठा सा प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं अनपढ़ सिंह से, और जिसे गा रही हैं लता मंगेशकर जी। तो आज का घर आंगन कार्यक्रम जो है वो हमें यहीं संपन्न करना पड़ेगा, क्योंकि घड़ी की सुइयां हमें आगे आपसे बात करने की इजाज़त नहीं देती, लेकिन अगली मुलाकात आपसे ज़रूर होगी, जल्दी होगी इसी कार्यक्रम में घर आंगन के साथ। सुनते रहिए इसे और जुड़े रहिए, और मुझे दीजिए अनुमति, यानी आपकी रेडियो सखी कल्पना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने

का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का। श्रोताओं, साल 2000 में हिंदी सिनेमा एक नए दौर में कदम रख रहा था और इसी दौरान एक ऐसी फिल्म आई जिसने बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार दिया, रोमांस को एक नया चेहरा दिया और युवाओं के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जिसका जादू आज भी बरकरार है।

0: जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म कहो ना प्यार है की। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी बल्कि प्यार, जुदाई, रहस्य और रोमांच का एक ऐसा सफर था जिसने दर्शकों को हंसाया, रुलाया और आखिरी पल तक अपनी सीटों से बांध ही रखा। एक तरफ मासूम प्यार की खूबसूरती तो दूसरी तरफ रहस्य रोमांच का ऐसा मेल जिसने इस फिल्म को अपने दौर की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल कर दिया। फिल्म का निर्देशन किया था और निर्देशन और निर्माण किया था राकेश रोशन ने, जबकि इसकी कहानी और पटकथा को आकार देने में मशहूर लेखिका हनी ईरानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस फिल्म के जरिए राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल को बड़े पर्दे पर लॉन्च किया, लेकिन शायद उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये डेब्यू हिंदी सिनेमा के सबसे सफल डेब्यू में से एक बन जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं उस गीत से जिसने फिल्म की रिलीज से पहले ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली।
1: ओए, कहाँ जा रहे हो तुम?
2: मैकडॉनल्ड से हैमबर्गर लाने जा रहा हूँ, तुम खाओगी?

जी हाँ श्रोताओं, कहो ना प्यार है ये आज की फिल्म है और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी और आप सुन रहे हैं आकाश में दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। तो श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और आपको बताते हैं एक दिलचस्प किस्सा जिसने बॉलीवुड को एक नई सुपरस्टार हीरोइन और एक हीरो दिया। जब इस फिल्म की तैयारी चल रही थी तब करीना कपूर को इसकी लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया गया था। उनकी और ऋतिक की जोड़ी को लेकर काफी उत्साह था। करीना ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। राकेश रोशन ने मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में बड़ा सेट लगवाया था और एक गाने की शूटिंग से शुरुआत करने वाली थी, लेकिन फिर कुछ मतभेद

दोस्त अमित पटेल से हुई। उनके साथ उनकी बेटी अमीषा पटेल भी थी। राकेश रोशन को अमीषा स्क्रीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी। उन्होंने पूछा कि क्या वे फिल्मों में काम करना चाहेंगी, और यहीं से अमीषा पटेल की बॉलीवुड यात्रा शुरू हो गई। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की। आज भले ही वे सुपरस्टार हों, लेकिन उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था। वे काफी शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। खुद को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने घंटों डांस की, प्रैक्टिस की, एक्टिंग सीखी और अपनी आवाज पर भी खूब मेहनत की। इस फिल्म में ऋतिक के दो बिल्कुल अलग किरदार निभाने का मौका मिला था। एक तरफ मासूम और भावुक रोहित, तो दूसरी तरफ आत्मविश्वासी और आकर्षक राज। राकेश रोशन चाहते थे कि दर्शक एक ही फिल्म में ऋतिक की एक्टिंग, डांस और एक्शन तीनों का पूरा जलवा देखे। अपने फिजिक पर काम करने के लिए ऋतिक ने सलमान खान की भी मदद ली थी, और ऋतिक ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो जो हुआ वो तो इतिहास ही बन गया। ऋतिक रोशन रातों रात देश भर के युवाओं के दिलों की धड़कन बन गए। कहा जाता है कि उन्हें लगभग 30,000 शादी के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन लाखों दिलों की धड़कन बन चुके ऋतिक ने जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन खान से शादी कर ली और अपने फैंस का, खासकर महिला फैंस का दिल थोड़ा सा तोड़ दिया। और इसी तरह एक फिल्म में ने बॉलीवुड को दो नए सितारे दिए, ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल। वहीं सहायक कलाकारों की मजबूत टीम में दिलीप साहिल, मोनीश बहल, आशीष विद्यार्थी, सतीश शाह और फरीदा जलाल जैसे अनुभवी कलाकार शामिल थे, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को और भी प्रभावशाली बनाया। तो चलिए संगीत के सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म से एक और गीत।

0: रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी कोई बहुत अनोखी नहीं थी, लेकिन इस फिल्म को पर्दे पर पेश करने का जो तरीका था वो अनोखा था, और इसका जो हीरो था वो बिल्कुल अनोखा था। कहानी में एक जैसी शक्ल वाले दो युवक रोहित और राज, एक ही लड़की सोनिया की जिंदगी में अलग अलग समय पर आते हैं, और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, इंसान को जिंदगी में प्यार कई बार हो सकता है, लेकिन हर बार उसकी वजह और एहसास अलग होते हैं। सोनिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। रोहित उसकी जिंदगी में मासूम मोहब्बत बनकर आता है, जबकि राज उस समय उसका सहारा बनता है जब वो अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही होती है। इसके बाद कहानी प्यार, रहस्य और रोमांच के ऐसे सफर पर निकलती है जहां कई छिपे हुए राज सामने आते हैं। तो श्रोताओं, अगर ये राज आपको भी जानना है तो ये फिल्म जरूर देखिएगा। ये आपको उस दौर में ले जाएगी जब फिल्मों में रोमांस की मासूमियत, गीतों की मिठास और कहानियों का जादू कुछ अलग ही हुआ करता था। तो चलिए इसी जादू को महसूस करते हैं इस सॉन्ग के साथ।

केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, किसी भी फिल्म की सफलता में उसकी कहानी और कलाकारों का योगदान तो होता ही है, लेकिन कहो ना प्यार है कि कामयाबी में इसके संगीत ने भी उतनी ही अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म का संगीत तैयार किया था मशहूर संगीतकार राजेश रोशन ने, वहीं इसके गीत इब्राहिम अश्क, सावन कुमार टाक और विजय अकेला ने लिखे थे। खास बात यह थी कि फिल्म का संगीत उस दौर के युवाओं की पसंद और भावनाओं को बेहद ही खूबसूरती से छुआ था। राकेश रोशन ने इस फिल्म के जरिए अपने पुराने दोस्त महमूद के बेटे लकी अली को भी बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के तौर पर एक बड़ा मौका दिया। उस समय लकी अली अपने पॉप एल्बम की वजह से युवाओं के बीच में बेहद लोकप्रिय थी। फिल्म में उन्होंने दो गाने गाए और दोनों ही गाने लोगों के दिलों में बस गए। खास तौर पर उनका सूफियाना अंदाज फिल्म के संगीत को एक अलग ही पहचान देता है। इसके अलावा उदित नारायण, कुमार शानू और बाबुल सुप्रियो जैसे शानदार गायकों ने भी ऋतिक रोशन के किरदार को अपनी आवाज दी। गीतों के बोल और धुनों का ऐसा मेल बना कि एल्बम का लगभग हर गाना सुपरहिट साबित हुआ। फिल्म के संगीत को लॉन्च करने का कार्यक्रम भी खास रहा। राकेश रोशन के करीबी दोस्त जितेंद्र और ऋषि कपूर ने अंधेरी के द क्लब में इसका म्यूजिक रिलीज किया था और फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके गाने हर तरफ सुनाई देने लगे। साल 2000 में कई बड़ी फिल्मों के म्यूजिक एल्बम को पीछे छोड़ते हुए कहो ना प्यार है कि लगभग 1 करोड़ म्यूजिक एल्बम और कैसेट बिके थे। ये अपने आप में एक बड़ा ही रिकॉर्ड था। तो आइए अब सुनते हैं इसी फिल्म का एक ऐसा ही गीत जिसने लाखों दिलों को धड़कना सिखाया।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारे पास हमारे प्यारे श्रोताओं का मेल आ गया है, उसे हम पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। और हम आगे बढ़ते हैं और ये मेल आया है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुंडूर, गुलराल और अविराज जी का आया है ठाकुरावाला से। और ये है वीरमगांव गुजरात से अजीत कुमार भावसार, प्रमिला भावसार। और ये है कुमकुम जी

जय रतन माला मोताला महाराष्ट्र से। और संदीप मकर जी का है ज्योति मन्नत भारत कमल सहानी पिंगा वाला चौक जालंधर पंजाब से। और ये हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ पलियारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस वर्मा निखिल और यशस्वी। और इंद्रानगर भवरपुर से राधेश्याम और राजू चंपा और जगदीश का। दंतरेगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का।

कि ये मेला है राकेश रोशन, ये लिखते हैं राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है बेहद सुपरहिट फिल्म है और आपकी प्रस्तुति लाजवाब है, धन्यवाद आपका सुरेश यादव, अनीता यादव, सोनल प्रसाद यादव और नेहरू चौक से। और ये मेल आया है हमारे पास पीएस निर्मला विशाल, नारायण सोपान और आशीष का, और ये है महाराष्ट्र से।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और अब हम पहुंच चुके हैं फिल्म के आखिरी पड़ाव पे। श्रोताओं, अब वक्त हो रहा है कहो ना प्यार है से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातों को बताने का। फिल्म की कहानी का अंत कैसे हो, इसे लेकर मेकर्स काफी सोच विचार कर रहे थे। यही वजह है कि फिल्म के लिए दो अलग अलग एडिटिंग एंडिंग शूट की गई, और एक एंडिंग में राज की मौत हो जाती है और सोनिया अकेली रह जाती है, जबकि दूसरी एंडिंग में राज बच जाता है और दोनों की प्रेम कहानी खुशी खुशी पूरी होती है। आखिरकार राकेश रोशन और उनकी टीम ने दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए हैप्पी एंडिंग को चुना, और शायद यही फैसला दर्शकों के दिलों तक फिल्म को और गहराई से पहुंचाने में कामयाब रहा। श्रोताओं, साल 2000 में रिलीज हुई कहो ना प्यार है सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बन गई जिसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लगभग 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 80 करोड़ रुपए का कारोबार किया और उसी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पुरस्कारों की बात करें तो इस फिल्म ने एक नया इतिहास रच दिया। ऋतिक रोशन को इसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोनों पुरस्कार मिले, जो अपने आप में एक अनोखी उपलब्धि थी। इतना ही नहीं, कहो ना प्यार है ने कुल 92 पुरस्कार जीते। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया। ये अपने दौर की सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। आज भी ये फिल्म अपनी बेहतरीन कहानी, डांस और संगीत के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के लास्ट सॉन्ग की तरफ।

इसी के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम फिर हाजिर होंगे दिन के 2:30 पर एक ही कलाकार प्रोग्राम लेके। तब तक आप अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स से भारत एक अजी दुनिया की यत्नशील ने जिथे विकास वधेरे समावेशी हुए ते अंतरराष्ट्रीय संस्थावां समकाली हकीकतां नूं दर्शाउंदियां होण। श्री मोदी सेशल्स से 3 दिन सफल दौरे तो बाद भारत लई रवाना हो गए ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शामी राष्ट्रपति भवन विखे साल के दूजे रक्षा सन्मान समारोह में बहादुरी पुरस्कार प्रदान करेंगे। नीट यूजी प्रीख्या लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 10 मुलजमान की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। सरकार ने कानूनी नापतोल एक्ट 2009 तहत सुधार सूचना प्रणाली लागू की है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान में कथित वित्तीय बेनियमियों की अदालती निगरानी हेठ जांच की मांग करने वाली जनहित पटीशन से तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज अफरीकी देश सेशल्स से अपने दौरे के तीजे दिन विक्टोरिया के नव शक्ति विनयनगर मंदिर का दौरा किया। पूजा अर्चना की उन्होंने उत्थे भारतीय प्रवासियों भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क विखे महात्मा गांधी के बुत के फुलों श्रद्धांजलि भी भेंट की। श्री मोदी सेशल्स से 3 दिन सफल दौरे तो बाद भारत लई रवाना हो गए हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की आजादी की 50वीं वरेगंढ मौके सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। श्री मोदी ने विशेष मेहमान वजो समागम शिरकत की। प्रधानमंत्री ने वातावरण सुरक्षा से निरंतर विकास में उन्होंने अगुवाई ली सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मानित किया गया, जिस नाल वह यह सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए ने। सेशल्स की नैशनल असैम्बली भी संबोधन किया। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोवें एक अजी दुनिया लई यत्नशील ने जिथे विकास वधेरे समावेशी और अंतरराष्ट्रीय संस्थावां समकाली हकीकतां दर्शाउंदियां होण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज दुनिया के वक् वक् सभ्याचारां दा सत्कार करन दी अहमियत ते जोर दिता है। सोशल मीडिया से एक संस्कृत सुभाषितम साझा करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के वक् वक् सभ्याचारां दा सत्कार करन नाल लोकां विच विश्वास ते सहयोग वधदा है। उन्होंने अगे कहा कि आपसी समझ ते भाईचारे नूं भी उत्साहित करदा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शामी राष्ट्रपति भवन विखे साल के दूजे रक्षा सन्मान समारोह में बहादुरी पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस मौके पर राष्ट्रपति हथियारबंद सेनावां केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलों राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के कर्मचारियों को बहादुरी पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार उन सैनिकों को दिए जाते हैं जो असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं। ये सम्मान दहशतगर्दी बगावत और सरहदी इलाकों में चुनौतियों विरुद्ध देश की निरंतर लड़ाई भी दर्शाते हैं। यह हवाबाजी समुद्री कार्यों और मानवतावादी मिशनों में दिखाई गई बेमिसाल बहादुरी को भी मानता देते हैं। इस तो पहले राष्ट्रपति ने इस महीने की 8 तारीक को राष्ट्रपति भवन विखे सम्मान समारोह के पहले पड़ाव में बहादुरी पुरस्कार प्रदान किए सन। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ने अज नवी दिल्ली च संसद भवन विखे राज्यसभा के मैंबर वजों सहुं चुकी। उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति सी पी राधा कृष्णन ने करनाटक तो उच्च सदन की दुबारा चुने गए श्री खड़गे को सहुं चुकाई। इस मौके संसदीय मामलों बारे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सीनियर कांग्रेस आगू सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद सन। नीट यूजी प्रीख्या लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 10 मुलजमान की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। मुलजमान उन्होंने पिछली न्यायिक हिरासत की म्याद खत्म होने तो बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही राउस एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। इस तो पहले 15 जून राउस एवेन्यू अदालत ने आज तक 10 मुलजमान की न्यायिक हिरासत दी। सीबीआई ने

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੱਖਿਆ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨੀਟ ਯੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਪਤੋਲ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुताल्लिक अवार्ड पेश करेंगी। हुकूमत ने कारोबार में सहूलत पैदा करने की गर्ज से तरीक़ेकार को बेहतर बनाने से मुताल्लिक एक नोटिस मुतारिफ कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आम्मा की एक अर्जदाश्त पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया है, जिसमें राम मंदिर अतियात के केस में मुबैना माली बेजाब्तियों की छानबीन अदालत की निगरानी में कराने की दरख्वास्त की गई थी। हरियाणा और राजस्थान ने आज अमित शाह की मौजूदगी में जमुना के पानी की तकसीम से मुतालिक एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली में वोटरों की खसूसी जाम नजरसानी मुहिम SIR के तहत वोटरों को इलेक्टोरल फॉर्म्स घर घर जाकर तकसीम किए जाने का अमल कल से शुरू होगा। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो जान से मारने की धमकियों के बावजूद इस साल के आखिर से पहले तक बांग्लादेश वापस चली जाएंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में लॉस एंजलिस में खेले गए पहले नॉकआउट मैच में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुताल्लिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासत व मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अता करेंगी। ये इनामात मुसल्लह दस्तों, मरकजी पुलिस फोर्सेज और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू कश्मीर, शुमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जद्दोजहद की अक्कासी होती है। नीज एविएशन, समुद्री कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दियों वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अता किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनाकिद की गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के अपने दौरे के तीसरे दिन आज विक्टोरिया में नवाशक्ति विनय नागर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां भारत निजात अपराध से मुलाकात भी की। बाद में वजीर आजम ने पीस पार्क में वाकई महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलाए अकीदत नजर किए। जनाब मोदी सेशल्स का अपना 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद भारत रवाना हो गए हैं। कल वजीर आजम मोदी ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वजीर आजम है जिन्हें ये एजाज दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक मार्चिंग दस्ते ने शिरकत की। इसके अलावा भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। खैर सगाली के एक खसूसी जज्बे के तौर पर INS तरकश और INS ईस्ट शार्क को पोर्ट विक्टोरिया पर लगनअंदाज किया गया, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरका तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहरीन खत्ते में एक अहम समुद्री पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जनूब के तई भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इरादा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरका अहद की भी

0: gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL, seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from free language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर

0: स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को

0: सीकर झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकट के क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने आज

0: एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष अमीशा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कूप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अंतर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव यौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेश खिदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणे कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी।

0: आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है, बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी।
2: आई इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
1: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता, रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं, ना लकड़ी की कमी ना फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूँ सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही हमारा।

0: मुझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़। और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे। ठीक?
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
2: क्या घुल मिलकर बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
2: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
2: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ माँ, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
2: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत, अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यार, है? सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये?
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा, जा, सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल, चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो... चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वहाँ पर।

0: ना, वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
2: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
3: ये जामुन?
2: हाँ
3: चलो इसी को काट देते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
3: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
2: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
3: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है। ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
2: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
2: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
3: ये
2: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
3: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
2: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
3: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है।
2: क्यों?
3: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
2: हाँ हाँ
3: चलो
2: चलो, आगे चलकर देखते हैं। अब चलो,
3: ये
2: देखो,
3: ये
2: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़ और वही बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
2: चलो, इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
2: आई, क्या हुआ चुप्पा?
3: क्या हुआ
1: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
2: अरे दिखा दो
1: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
3: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
3: हाँ बेटा, ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
2: हाँ।
3: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
2: अरे नुकसान भी क्या है?
3: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
2: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
3: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
2: क्यों?
1: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
2: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
3: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
3: हाँ बिल्कुल।
2: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है, बुधवा रहने दे इसको भी।
3: अच्छा।
2: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
3: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
2: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
3: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
2: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
3: और क्या।
2: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
3: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
3: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा।

0: पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
1: तू समझ गई है?
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे। फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे। हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
2: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोल ना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
1: सच्ची।

0: बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
1: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
2: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
1: किसी ने कहा,
3: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
1: किसी ने कहा,
4: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
1: किसी ने कहा,
5: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
1: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
1: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
2: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
7: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।

0: मीडियम में भी 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: रजी अहमद से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक अवार्ड पेश करेंगी। हुकूमत ने कारोबार में सहूलत पैदा करने की गरज से तरीक़ाकार को बेहतर बनाने से मुतालिक एक नोटिस की शुरुआत की है। अमरीका और ईरान हमले और जवाबी हमले रोकने पर रजामंद हो गए हैं। दोनों ममालिक कल दोहा में आबनाए हुरमूज के बारे में बातचीत शुरू करेंगे। बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो जान से मारने की धमकियों के बावजूद इस साल के खत्म होने से पहले बांग्लादेश लौट जाएंगे। और फीफा वर्ल्ड कप में लॉस एंजलिस में खेले गए पहले नॉकआउट मैच में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 के दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी के इनामात अता करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अता करेंगी। ये इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू कश्मीर, शमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जिद्दोजहद की अक्कासी होती है। नीज एविएशन, समुद्री कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दी वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी के इनाम अता किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस महीने की 8 तारीख को मुनाकिद की गई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के अपने दौरे के तीसरे दिन आज विक्टोरिया में नवाशक्ति विनायागार मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां भारत नजाद अफराज से मुलाकात भी की। बाद में वज़ीर आज़म ने पीस पार्क में वाकई महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत नजर किए। जनाब मोदी सेशल्स का अपना 3 रोज़ा कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद भारत रवाना हो गए हैं। कल वज़ीर आज़म मोदी ने सेशल्स की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्हें यह एजाज दिया गया है। इस मौके पर परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक मार्चिंग दस्ते ने शिरकत की। भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। खैर सगाली के एक खसूसी जज्बे के तौर पर INS तरकश और INS एक शक को पोर्ट विक्टोरिया पर लगनअंदाज किया गया, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। जनाब मोदी सेशल्स के सदर की दावत पर हफ्ते के रोज सेशल्स पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वजीर आजम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरका तारीखी, सकाफती और आवाम से आवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहरे हिंद में खत्ते

एक अहम समुद्री पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जुनूब के तई भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया है कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इजाफा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरका अहद की भी अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ़ और पायदार तरक्की के शोबे में क्यादत पर सेशल्स के आला तरीन अवार्ड गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी नवाजा गया। वजीर आजम ने सेशल्स की कौमी असेंबली से भी खिताब किया, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेशल्स और भारत ऐसी दुनिया के क्याम के ख्वाहिशमंद हैं जहां तरक्की के फायदे सबको हासिल हों और जहां बेअल्कवामी इदारों में असर हाजिर के हकायक की अक्कासी होती हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुनिया की गुनागुन सकाफत का एहतराम करने पर जोर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत का एक सुभाषितम यानी अनमोल कौल शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया की गुनागुन सकाफत का एहतराम करने से लोगों के दरमियान एतमाद और इश्तराक का जज्बा पैदा होता है और बाहमी मुफाहमत और भाईचारे को तकवीत हासिल होती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने जन विश्वास तरमीमी एक्ट 2026 के जरिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत एक इम्प्रूवमेंट नोटिस तरीक़ेकार का आगाज किया है। नए निज़ाम में पहली बार जाब्तों के खिलाफ वर्जी करने वाले कारोबारियों को ये छूट दी गई है कि वो सजा की कार्रवाई शुरू किए जाने से पहले खामियों को दूर कर लें। सार्फिन की उम्र की वजारत ने कहा है कि इसका मकसद रजाकाराना तौर पर जाब्तों की पाबंदी करने और मुकदमात को कम करने की हौसला अफजाई करके कारोबार में आसानी को फरोग देना है। इसमें मजीद कहा गया है कि जाब्तों की बार बार खिलाफ वर्जी किए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। यह तरीक़ाकार मैन्युफैक्चरर्स, दरामदकारों, डीलरों, एमएसएमईज और दूसरे मुंजबित इदारों का इहाता करता है। अमेरिका और ईरान इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी फौजी कार्रवाई को रोकना है, जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लायक हो गया था और साथ ही आबनाए हुरमूज से मुतालिक तनाज़े को हल करना है। यह ऐलान आबनाए हुरमूज के आसपास कई हमलों के बाद किया गया है। अमेरिका ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने तजारती जहाज़ों पर हमला करके जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की है, जिसके बाद उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर हमले किए। उधर ईरान ने बहराइन और कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिजाइल्स और ड्रोन से हमले किए। दोनों ही मुल्कों की तरफ से मजीद कशीदगी पैदा हो जाने के तई नए सिरे से खबरदार किया गया है। एक अमरीकी अफसर ने बताया है कि अब दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हमला करने से बाज रहेंगे। बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो इस साल के खत्म होने से पहले बांग्लादेश वापस चली जाएंगी। उन्होंने कहा कि अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों, सजाए मौत और अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद वो ये कदम उठाएंगी। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमात को सियासी अगराज पर मबनी बताया और मौजूदा हुकाम पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बांग्लादेश के सियासी मंजरनामे से अवामी लीग का वजूद खत्म करने के लिए अदलिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहतरमा हसीना का बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब अवामी लीग ने अपना 77वां योम तासीस मनाया, हालांकि इसकी सरगर्मियों पर मुल्कगीर पाबंदी आयद है। कांग्रेस के सद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट में राज्यसभा के रुकने के तौर पर हलफ लिया। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के सदर नशीं सीपी राधाकृष्ण ने जनाब खड़गे को हलफ दिलाया। कौमी राजधानी दिल्ली में वोटरों को इलेक्टोरल एनुमरेशन फॉर्म तकसीम किए जाने का काम कल से शुरू होगा। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए ऐलान किया। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर्स कल से अगले महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर

और समझ लीजिए, जब सुनिए आशा भोसले, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा है, जिसे मौसीकी सजाया है राहुल शर्मा ने, फिल्म है मुझसे दोस्ती करोगे।

और शामिल है आज के मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। शोले फिल्म का नगमा किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में, मौसिकार आर डी बर्मन।

सामीन इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है कहकशां प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम की तहत सुनिए फिल्म कभी।

0: कभी की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया है सरफराज अहमद ने।
1: कल नई कोंपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे।

0: मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? फिल्म साज यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी दो नस्लों के दरमियान मोहब्बत के रिश्तों की कहानी है। इस फिल्म की एक नस्ल वो है जो माँ बाप के अरमानों और ख्वाहिशात के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोंट देते हैं। इस नस्ल की नुमाइंदगी अमित यानी अमिताभ बच्चन और पूजा यानी राखी करते हैं। दूसरी नस्ल उन नौजवानों की है जो माँ बाप और समाज पर अपनी मोहब्बत को मुकद्दम तसव्वुर करते हैं और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। इस नस्ल की नुमाइंदगी विक्की यानी ऋषि कपूर और पिंकी यानी नीतू सिंह ने की है। फिल्म की इब्तिदा दिल्ली के एक कॉलेज में एक जलसे से होती है जिसमें अमित अपना गीत सुनाकर खूब खूब दादे तहसीन वसूल कर रहा है।
1: मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है।

0: अमित के इस गीत से न जाने कितने दिल घायल हुए, कितनों के अरमान जागे, ये तो नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता नीली आंखों वाली एक साहिरा जिसका नाम पूजा था, उसकी शायरी से मुतासिर हुई और जलसे के बाद ऑटोग्राफ लेने अमित के पास पहुंच गई।
1: ऑटोग्राफ प्लीज।
2: आप मुझसे ऑटोग्राफ मांगे?
1: आपने इतनी अच्छी नज़म लिखी है।
2: आपको पसंद आई?
1: बहुत। प्लीज
2: ऑटोग्राफ क्या, आप ये नज़म ही रख लीजिए, शायद आपके लिए ही कही है।
1: लेकिन इस पर तो आपका नाम भी नहीं। नाम लिख दीजिए।
2: क्या नाम है मेरा? आपको देख के मैं अपना नाम भूल सके?
1: आप हमारे लिए कुछ लिखे ना।
2: आपका नाम?
1: पूजा।
2: मेरा नाम पुजारी नहीं हो सकता?

0: आपने कभी अपनी आंखें देखी?
1: जी, कोई खास बात है?
0: जहां देखती है एक रिश्ता कायम कर लेती है।
2: ये अमित और पूजा की पहली मुलाकात थी। अमित भी पूजा के सहरंगेज हुस्न से मुतासिर हुए बगैर न रह सका और ये पहली मुलाकात दिलों के रिश्तों में बदल गई और दोनों की रोजाना मुलाकातें होने लगी।
0: तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफर ही असली हयात है, मेरे हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार घर मेरे साथ है, मेरी बात का मेरी हमनफर्ज, मेरी बात का मेरी हमनफर्ज, तू जवाब दे कि न दे मुझे, तेरी एक चुप में जो है छुपी, तेरी एक चुप में जो है छुपी, वो हजार बातों की बात है, मेरी जिंदगी का हर एक पल, मेरी जिंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है जुड़ा हुआ, तेरे होंठ थिरके तो सुबह है, तेरी जुल्फ बिखरे तो रात है, तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफर ही असली हयात है।
2: पूजा, कभी कभी ये सब एक सपना सा लगता है ना?
3: नहीं पूजा, नहीं नहीं।
1: हमारे हॉस्टल के हर लड़की तकिए के नीचे तुम्हारी कविता रखकर सोती है। देखने तो तुम्हारी तस्वीर के साथ शादी भी कर ली है। उन्हें अगर पता चल जाए कि तुम मुझे चाहते हो तो जहर खाकर मर जाए।
0: बेचारी लड़कियां।
1: बेचारी क्यों?
3: यही तो तारीफ है उनकी। तस्वीर किसी की रखेंगी, प्यार किसी और से और शादी किसी तीसरे से।
1: इसमें उनका क्या कसूर है? माँ बाप लड़की की मर्जी कहाँ पूछते हैं, जहाँ जाते हैं शादी कर देते हैं।
3: तुम तो ऐसा नहीं करोगे?
1: अपने माता पिता से पूछ कर तुम्हें जरूर बताऊंगी।
3: शर्त लगा रही हो या मजाक कर रही हो?
1: तुम वादा ले रहे हो या मेरा इम्तिहान?
3: मैं अपनी जिंदगी संवारना चाहता हूं।
1: वो कैसे?
3: मैं हर सुबह इन कटोरों की हंसी पीऊंगा और हर शाम इन चिरागों से रोशन करूंगा।
1: और तारीफ करो ना मेरी, तुम्हारे मुझसे बहुत अच्छा लगता है।

0: और फिर उन दोनों की जिंदगी में एक दोराह आया। दोनों को फैसला करना था कि किस समत जाएं। एक तरफ उनके अपने जज्बात और दूसरी तरफ माँ बाप के अरमान। फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्हें फैसला करना ही पड़ा।
1: एक तरफ माँ बाप और दूसरी तरफ तुम। मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम बताओ अमित, मैं क्या करूं?
2: मेरे ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए।
1: तुम मुझे भुला दोगे?
2: जिस दिन तुम्हें भुला दूंगा, अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।

0: ऐसे गुजारेंगे जिंदगी।
1: तुम एक अच्छी पत्नी बनोगी और मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा।
0: एक वादा करोगे?
1: अच्छा तो यह है कि कोई वादा ना करे।
0: मैं अपना अधिकार मांगती हूं।
1: कहो।
0: तुम शायरी नहीं छोड़ोगे?
1: शायरी कुछ ऐसे तो नहीं होती जैसे कोई मकान बनाता है, ईंट पत्थर सीमेंट गारा इकट्ठा करता है।
0: लेकिन लिखोगे तो मेरे दिल का कोई हिस्सा मुस्कुराता रहेगा।
1: पूजा।
0: हामिद।
1: शायद तुम्हारा नाम मैं आखिरी बार पुकार रहा हूं।
0: सोच समझ कर फैसला किया ना?
1: हाँ।
0: पूछ सकती हूँ क्यों?
1: हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम अपनी खुशी के लिए अपने मां बाप के अरमानों का गला घोंट दें, उनकी लाशों पर अपने प्यार का महल बनाएं।
0: बस अब कुछ नहीं रह गया पूछने को कहने को, कुछ नहीं।
1: मैंने चांदनी के कुछ फूल इकट्ठे किए हैं, मेरी पहली किताब। सोचा था अपने प्यार का तोहफा समझकर तुम्हारी नजर करूंगा। क्या पता था वक्त के साथ साथ ये तुम्हारी शादी का तोहफा बन जाएगा।
2: और इस तरह दोनों की राहें अलग हो गईं। पूजा ने एक आर्किटेक्ट विजय खन्ना से शादी कर ली और मिसेज विजय खन्ना हो गई।
3: मेरी तरफ से शादी का यह तोहफा कबूल कर लो। खुद शायर होता तो तुम्हारे लिए किताब लिखता। शायरी मेरी कमजोरी है, खासतौर पर ये शायर और इसकी नस्ल। कभी कभी ऐसा लगता है शायर का हर लफ्ज उसके दिल से निकला है।

0: Ne var? Ne var? अगर मैं अपने चेहरे का ये पोस्टर लिए सीधे रिसेप्शन डेस्क चला जाऊं और उस बनी ठनी लड़की से कहूं गुड मॉर्निंग मिस, तो वो क्या कहेगी?
1: बेशर्म कहेगी। चलिए उठे ना, दिन चढ़ा है।
0: लोग तो कहते हैं हनीमून में कभी सूरज नहीं निकलता, हमेशा रात रहती।
1: पागल हुए बोलो।
0: और अगर सूरज महाशय निकल भी आए तो आदमी आंखें बंद कर ले और फिर वही रात की रात।
1: और कोई काम नहीं रहेगा आपको?
0: नहीं, हनीमून मीन्स लव, जस्ट सिंपल लव, एंड डार्लिंग लव इज लाइफ। पता है शादी से पहले मैं सोचता था कि आदमी को शादी कभी नहीं करनी चाहिए, बस 10-12 इश्क कर ले आदमी। लेकिन उनसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी फिलोसफी बदल गई। शादी मीन्स बैंक अकाउंट, जब चाह चेक कैश करा लिया।
1: बैंक में प्यार की कैश भी जमा करानी पड़ती है, नहीं तो कभी कभी चेक वापस लौट आता है।
0: वो तो कर रहा हूं सुवीरात।
2: और अमित अपने दिल के अंधेरों में गुम हो गया और शेरो शायरी छोड़कर गुमनामी की जिंदगी बसर करने लगा, क्योंकि उसे पूजा के बिछड़ने का गम था। लेकिन पूजा अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर एक हिंदुस्तानी औरत की तरह अपने शौहर की दिलजोई और खुशनूदी में गुम हो गई। उसके यहां एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम विक्की रखा गया। विक्की बचपन से ही शरीर और खिलंडरा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी मुलाकात पिंकी से हुई और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे।

मालूम हुआ कि जिन्हें वो अपने माँ बाप समझे हुए थी वो उसके माँ बाप नहीं है। इस खबर से उसे बहुत धक्का लगा और वो अपनी असली माँ से मिलने के लिए देहरादून चली गई। देहरादून पहुंचकर उसे पता चला कि उसकी माँ उसे अपनी बेटी मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी माँ यानी अंजू ने कसदन और मसलहतन पिंकी को टका सा जवाब दिया था। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि अमित पर यह राज फाश हो कि उसकी स्वीटी के अलावा भी कोई और बेटी है। दरअसल

राज अंजू के माजी से वाबस्ता था। अंजू एक नौजवान पायलट से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से एक हवाई हादसे में उसकी मौत हो गई। बदनामी के डर से अंजू ने पिंकी को जन्म देने के बाद दिल्ली के एक डॉक्टर आरपी कपूर को दे दिया था और पिंकी उन्हीं के घर पल बढ़कर जवान हुई थी। अंजू ने बाद में शिकस्ता दिल अमित से शादी कर ली थी और इस तरह स्वीटी उसकी दूसरी बेटी थी।

0: प्रेम की बड़ी उम्मीदें लेकर अपनी मां के पास आई थी, लेकिन मां के रवैये से उसका दिल टूट गया।
1: मैं अपनी मां को मां कह सकती हूं?
2: नहीं, अभी नहीं।

0: तुम्हारे आंसू बता रहे हैं तुम मुझे याद करके बहुत रोई हो।
1: प्लीज विकी,
0: मेरी आंखें तुमसे कुछ नहीं कह रही, समझ नहीं सकती, तो कम से कम इतना तो पूछ लो मैंने अपना सफर कैसे तय किया।
1: मैं बहुत परेशान हूँ विकी।
0: मुलाकात हो गई माँ से ना?
1: तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था विकी, आ गए हो तो मिलोगे नहीं, और अगर मिल गए तो पहचानोगे नहीं। तुम जानते हो कि मेरा एक पास है जिसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
0: कहा था बुझी हुई आग को हवा नहीं देते, राख उड़ती है। मैं भी यहां पतंग उड़ाने नहीं आया हूं। अब देखो विकी का फॉर्मूला 44।
2: पिंकी चूंकि खुद बुरी तरह परेशान थी, इसलिए उसने विक्की की तरफ बेतवज्जोही का इजहार किया, और विक्की ने अपनी इस तजहीक का बदला लेने का फैसला किया और पिंकी के सामने ही स्वीटी से इश्क की पींगे बढ़ाने लगा।
3: तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग।

0: एक बात बताओ, तुमने लिखना हमारी वजह से बंद तो नहीं कर दिया? मैं स्वीटी, हमारी घर गृहस्थी, जब भी मैं सोचती हूँ मेरा दिल भारी सा हो जाता है, अपने आप को दोषी समझने लगती हूँ।
1: अंजू, ये ख्याल अपने दिल में कभी मत लाना कि मेरी इस हार, इस शिकस्त का कारण तुम हो। शायद मेरे दिल का कोई हिस्सा मर गया है।
0: मैं दवा नहीं बन सकती अमित।
1: सोचता था दर्द ही दवा बन जाएगा।
0: ये भी तो हो सकता है कि दर्द को दर्द ही न समझो। अच्छी बुरी बीती हुई कोई घटना, कोई हंसता हुआ जख्म, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो उसे।
1: लाख कोशिश की अंजू, फिर सोचता हूं जिंदगी में सबको सब कुछ तो नहीं मिल जाता।

0: क्या तुम स्वीटी से प्यार करते हो?
1: तुम्हारा क्या ख्याल है?
0: मेरे ख्याल में तुम नाटक कर रहे हो, ठग कर रहे हो, और जानते हो लोग क्या सोच रहे तुम्हारे बारे में? वो तुम्हारी शादी स्वीटी के साथ करने का सोच रहे हैं।
1: शादी पर आओगी ना?
0: गॉड डैम यू, बी सीरियस। किसी की जिंदगी का सवाल है
1: तो इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ पिंकी बोलो। सब कसूर तुम्हारा है पिंकी। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं 1100 मील दूर यहाँ पत्थर तोड़ने आया था, घर बार छोड़ के स्वीटी से मिलने आया था? तुम बताओ पिंकी, तुम्हारे यहां से कौन खुश है? तुम खुश हो? मैं खुश हूं? तुम्हारे माँ बाप खुश है या तुम्हारी ये नई माँ खुश है तुम्हारे आने से? समेट लो अपनी माँ की ममता जितनी चाहे समेट लो पिंकी। अभी अमित साहब को पता नहीं चला ना, ये चुपड़ी चुपड़ी बातें, ये लाड प्यार सब नफरत में बदल जाएगा, नफरत में। और इस सब फसाद की जड़ तुम हो पिंकी, तुम।
0: कसूर मेरा है, तुम मुझसे बदला लो। किसी मासूम बेगुना की जिंदगी क्यों खराब करते हो? इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम किसी के घर में आग लगाओ? जिन लोगों ने तुम्हें सहारा दिया, विश्वास किया, घर में अपना आदमी समझ कर रखा, उसका बदला ये चुका रहे हो कि उनकी बेटी कल तुम्हारी झूठ की वजह से जान दे दे या जहर खा ले?
1: तुम जिसे झूठ कहती हो वो सच भी तो हो सकता है विकी।
0: आई डिफाई यू विकी। हिम्मत है तो जाकर कह दो कि तुम स्वीटी से शादी करना चाहते हो।
1: तुम जानती हो मेरी जिंदगी की एक ही कमजोरी है, उसका फायदा ना उठाओ, उसका मजाक ना उड़ाओ, वो तुम हो तुम पिंकी।
2: उन्हीं दिनों विजय खन्ना अपनी बीवी पूजा के साथ अपने किसी कारोबारी काम के सिलसिले में देहरादून आया। यहां अमित विजय से मिलने उसकी कायमगाह पर पहुंचा तो पूजा से मुठभेड़ हो गई। अमित और पूजा अभी गिले शिकवे ही कर रहे थे कि विजय खन्ना वापस आ गया और एक ओट में खड़े होकर दोनों की बातें सुन ली।
3: बैठोगे नहीं?
4: विजय साहब कहाँ हैं?
3: वो तैयार हो रहे हैं, उन्हें तैयार होने में मुझसे ज्यादा वक्त लगता है।
4: बस जिंदा हूं।
3: बस
4: बस और क्या?
3: खुश हो?
4: दुनियादारी के पैमाने से देखो तो काफी खुश हूं। तुम कैसी हो पूजा?
3: मेरा क्या है अमित, जिस तरह तुमने चाहा उसी तरह जी रही हूं। अपना पति, अपना घर, अपना बच्चा, यही मेरी दुनिया है। मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। एक है, तुमने अपना वादा नहीं निभाया।
4: शेर कहने का मैंने वादा तो नहीं किया था,
3: लेकिन मैंने तो कहा था, इसरार था मेरा कि अगर तुम लिखोगे तो मैं तुम्हारे दिल के किसी हिस्से में जीती रहूंगी।
2: ये पूजा की जिंदगी का वो मोड़ था जहां अगर विजय चाहता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। विजय की जगह अगर कोई दूसरा इंसान होता तो वो अपनी बीवी को बच्चलन समझकर उसे तलाक दे देता, लेकिन विजय ने ऐसा नहीं किया। वो पढ़ा लिखा, जहीन और फराख दिल इंसान था। वो ये भी जानता था कि शादी के बाद पूजा ने उसे हर किस्म का सुख दिया और उसका हर वो हक अदा किया जिसका वो हकदार था। बल्कि उसके दिल में पूजा के तई और भी इज्जत पैदा हो गई कि पूजा ने अपने शिकस्त दिल के संग्रेजों से उसकी इज्दवाजी जिंदगी को बचाए रखा। दिल में दर्द था लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट और होठों पर कहकहे थे। पूजा का ये इशार यकीनन काबिल सताइश था और विजय ने इसका एतराफ भी किया। दूसरी तरफ जब स्वीटी को यह मालूम हुआ कि विक्की उसका नहीं

बल्कि पिंकी का है, तो उसे सदमा हुआ और वो खुदकुशी करने की गरज से एक घने जंगल में चली गई जिसमें आग लगी थी। और बिलाखिर अमित, विजय और विक्की ने अपने अपने तौर पर दौड़ धूप करके स्वीटी को बचा लिया और फिर गलतफहमियां दूर हुईं और विक्की की पिंकी से शादी हो गई।

एक अच्छा प्रोग्राम के तहत सामिन भी आप सुन रहे थे फिल्म कभी कभी की कहानी, नगमे और डायलॉग। इसे तरतीब दिया था जनाब सरफराज अहमद ने, पेश कर रहे थे एस एम शफीक। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फिर डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में गोपी फिल्म का ये नगमा। नगमा निगार राजेंद्र कृष्ण, मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।

खानदान फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, नगमा निगार थे राजेंद्र किशन, मौसीकार रवि। और सामने अब सुनी किशोर कुमार की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश, फिल्म है बुढ़ा मिल गया, मौसीकार हैं आर डी बर्मन।

ये भारत की लगातार जद्दोजहद की अक्कासी होती है। नीज, एविएशन, समुद्री कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दी वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनाम अदा किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनक्किद की गई थी। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के अपने दौरे के तीसरे दिन आज विक्टोरिया में नवा शक्ति विनयागर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां भारत नजाद अफराद से मुलाकात भी की। बाद में वजीर अजम ने पीस पार्क में वाकई महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलहयकीदत नजर किए। जनाब मोदी सेशल्स का अपना 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद भारत रवाना हो गए हैं। कल वजीर अजम मोदी ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की थी। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की थी। इस तरह वो भारत के पहले वजीर अजम हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया। जनाब मोदी सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी की दावत पर हफ्ते के रोज सेशल्स पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफुज और पायदार तरक्की के शोबे में क्यादत पर सेशल्स के आला तरीन अवार्ड गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन से भी नवाजा गया। वजीर अजम ने सेशल्स की कौमी असेंबली से भी खिताब किया, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेशल्स और भारत ऐसी दुनिया के कायम के ख्वाहिशमंद हैं जहां तरक्की के फायदे सबको हासिल हों और जहां बैन अलाक़वामी इदारों में असर हाजिर के हक़ाइक़ की अक्कासी होती हो। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल बरतानिया के अपने दौरे के बाद यूनान के एथेंस के लिए भारत के एक आला सतही कारोबारी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। इस वक्त की तवज्जो तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक माशी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर मरकूज रहेगी। तिजारत और सनअत की वजारत ने बताया कि यूनान के इस दौरे के दौरान मस्कूरा वक्त एथेंस स्टार्टअप्स बिजनेस इंक्यूबेटर्स में होने वाली प्रेजेंटेशंस और स्टार्टअप से मुतालिक तजावीज के प्रोग्राम में शिरकत करेगा। ये वक्त यूनान के दौरे में मैनुफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान इश्तराक कर सकेगा। सानवी तालीम से मुतालिक मरकजी बोर्ड CBSE ने आज जबानों से मुतालिक नई गाइडलाइन जारी की हैं। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि 10वीं जमात के मौजूदा बैच के तलबा इस नई पॉलिसी से मुस्तस्ना हैं। बोर्ड ने मजीद कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात के तलबा जब 10वीं जमात में पहुंचेंगे तो वो भी तीसरी जमात में बोर्ड इम्तहान देने के मजाज नहीं होंगे। CBSE ने यह भी कहा है कि 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात के वो तलबा जिन्होंने पहले ही 2 गैर मुल्की जबानों का इंतखाब किया है उन्हें एक मादरी जबान के इंतखाब की इजाजत होगी। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी। इस यात्रा के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया कि हिफाजती इंतजाम काफिले के आगे बढ़ने और यात्रा बाकायदा शुरू होने से पहले तमाम तरकार तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक मुकम्मल मशक अंजाम की गई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लायक हो गया था और आबनाए हुरमुज से मुतालिक तनाजे को हल करना है। ये ऐलान आबनाए हुरमुज के आसपास कई हमलों के बाद किया गया है। अमेरिका ने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि उसने तिजारती जहाजों पर हमला करके जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की है, जिसके बाद उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर हमले किए। इधर ईरान ने बहरेन और कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। दोनों ही मुल्कों की तरफ से मजीद कशीदगी पैदा हो जाने के तई नए सिरे से खबरदार किया गया है। एक अमरीकी अफसर ने बताया कि अब तक दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हमला करने से बाज रहेंगे और मुजाकरात के दौरान इन जहाजों की बिला रुकावट आमोदरफ्त जारी रहेगी। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो इस साल के खत्म होने से पहले बांग्लादेश वापस लौट जाएंगी। उन्होंने कहा कि अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों, सजाए मौत और अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद किए जाए।

0: बावजूद वो ये कदम उठाएंगी। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमात को सियासी अग्रास पर मबनी करार दिया और मौजूदा हुकाम पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बांग्लादेश के सियासी मंजरनामे से अवामी लीग का वजूद ख़त्म करने के लिए अदलिया का इस्तेमाल कर रही हैं। मोहतरमा हसीना का बयान ऐसे वक्त सामने आया है कि जब अवामी लीग ने अपना 77वां यौम तासीस मनाया, हालांकि इसकी सरगर्मियों पर मुलगिर पाबंदी आयद है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 10 मुलजिमान की अदालती तहवील में 11 जुलाई तक तौसी कर दी है। ये तफ्तीश जांच से मुतालिक मरकजी एजेंसी सीबीआई कर रही है। मुलजिमान को उनकी साबिका अदालती हिरासत की मियाद पूरी होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले 15 जून को राउस एवेन्यू अदालत ने 10 मुलजिमान की अदालती तहवील में आज तक की तौसी कर दी थी। सीबीआई ने अब तक इस मामले में 13 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है और वो एक मुबैना नेटवर्क की तहकीकात कर रही है जो इम्तहान से पहले नीट यूजी के सवालनामे की खरीदारी में मुलविस थे। वेनेजुएला कौमी असम्बली के सदर जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि दो ताकतवर जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1450 तक जा पहुंची है। वेनेजुएला में ये जलजले बुध के रोज आए थे। इन जलजलों की शिद्दत 7.2 और 7.5 थी। जनाब रॉड्रिक्स ने मुल्क में इमरजेंसी की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते हुए कहा कि वेनेजुएला में इन जलजलों के बाद हल्के से औसत दर्जे के 430 झटके भी महसूस किए गए। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। अब 4 जुलाई को शनिचर को रोज होने वाले मुकाबले में उसका मुकाबला नीदरलैंड्स या मराकश की टीम से होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक अवार्ड्स पेश करेंगी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल यूनान की राजधानी एथेंस में आला सतह के कारोबारी वक्त की क़यादत कर रहे हैं। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गई हैं। और बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो जान से मारने की धमकियों के बावजूद इस साल तक बांग्लादेश वापस लौट जाएंगी। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। समय शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: ابھی آپ اردو سروس کے نشریات آکاش وانی دہلی سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو اور ایف ایم پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز ہے۔ سامعین، اب سے لے کر رات 10 بجے تک اب آپ ہماری نشریات میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز، ایف ایم 100.1 MHz اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم ویو تو گیان ششبی نشبی کلو ہرٹز، میڈیم ویو تو چنگ نغب گیان ششبی نشبی کلو ہرٹز، اب ہم ریاش ریچک میں گھر دونوں موبائل ایپ نیوز آن ایئر کا دیو آکاش وانی کرگل ان دیرین پر چپت پی پروگرام ان کھرے گا بلا وزیر نفر پان انتی خدمت لازب سود پروگرام ان خان سای خدمت لنگا جی جونا سلام پو پرد مچن سونشک دیرین ایجاق پو چندرال جونی لزنگی شوستر گو وقت پو فیتو غیتو سود غانا مرچک سونسو کسطا پروگرامی گوزوک پیگا پر چوگت دوایا پروگرام صداقت دی پروگرام رخصہ گنگن مزد سحمہ قرآن تلاوت نہ ترجمہ حجت الاسلام شیخ محمد عبداللہ کنام۔
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا

تلك القرى نقص عليك من أنبائها

0: Durante spurgi xabarin lagan inut pin media moy dona pemike di akashwani karkilin was putu sot gana mersum chu sun su kasata doctor ambu chukle kenar deluxe skorla tisek prachuget ngin mazat
1: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में।
2: साथियों, बहुत बार सुनते रहते हैं कि फला व्यक्ति को पाचन की समस्या है या वो स्वस्थ नहीं है तो उसमें कुछ ऐसी पाचन संबंधी दिक्कतें हैं। बहुत बार पाचन का संदर्भ सीधे अच्छे स्वास्थ्य से लगाया जाता है, क्योंकि आज जब हम भोजन करते हैं और अगर हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है या पच जाता है तो निश्चित तौर पर उससे संबंधित जो तत्व हैं वो हमारे शरीर को मिल जाते हैं, और यदि ऐसा नहीं होता तो हमारा शरीर जो आवश्यक तत्व है उनकी अनुपस्थिति में कमजोर होने लगता है और ढेर सारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। तो हमारे शरीर में पाचन संबंधी समस्याएं किन कारणों से हो सकती हैं और इनसे बचाव कैसे किया जाए, आइए इसके संदर्भ में बात करते हैं डॉक्टर अमर शुक्ला से, जो वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद जी। देखिए, एक तो ये समझना होगा कि पाचन तंत्र अपने आप में एक बहुत ही वृहद तंत्र है, और आहार नाल से शुरू होकर के और हमारा जो मलाशय है वहां तक का जो हिस्सा होता है वो पाचन तंत्र से संबंधित होता है
2: जी।
3: तो इस पूरे ट्रैक में, पूरे जो रास्ता है, इस रास्ते में अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो वो पाचन तंत्र के संबंधित बीमारियों में ही आती है
2: जी। जी,
3: अब इसमें आहार नाल की बीमारियां हो सकती हैं, स्टमक जो हमारा पेट होता है, जो आमाशय होता है उसकी बीमारी हो सकती है, उससे लगा हुआ लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय जिसको बोलते हैं, और पैंक्रियाज होता है। इसके अलावा फिर छोटी आंतें होती हैं, जो छोटी आंत जो काफी लंबी होती है
2: जी, जी, जी।
3: और उसके बाद अंत में बड़ी आंत होती है। तो इन सब में अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो वो इसी के अंतर्गत रखा जाता है उसको
2: जी। जी,
3: अब इसमें शुरुआत अगर हम करें तो जो बहुत कॉमन देखने में आता है, वो सबसे ज्यादा देखने में आता है डायरिया
2: जी। जी,
3: डायरिया या डिसेंट्री। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि अगर हम ध्यान दें तो भारत में तीसरा सबसे बड़ा कारण है बच्चों में मौत का, डायरिया जो होता है
2: जी। जी, जी,
3: इससे बच्चों की मौत होती है और तीसरे नंबर पर ये कारण रखा गया है। इसी तरह से डिसेंट्री होती है, लीवर डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस तो एक लक्षण है लेकिन लीवर में किसी तरह की समस्या हो सकती है, पैंक्रियाज में किसी तरह की समस्या हो सकती है, जो हमारा पित्ताशय है उसमें समस्या हो सकती है। तो इसको कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, एलर्जी से लेकर के इन्फेक्शन, किसी तरह का ट्यूमर या गॉल ब्लैडर जो पित्ताशय होता है उसमें स्टोन बनना।

0: बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें इस तरह की बीमारियां होती हैं।
1: जी
0: सबसे पहले किसी भी चीज के लिए, पाचन तंत्र संबंधी नहीं, अगर किसी भी बीमारी की बात करें तो बचाव सबसे अच्छी चीज होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज है कि अपनी दिनचर्या नियंत्रित रखनी चाहिए, संतुलित खान पान रखना चाहिए, सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, अच्छा भोजन करना। अच्छे भोजन का मतलब होता है जो हेल्दी फूड होता है, जैसे कि आजकल जो चलन है फास्ट फूड बहुत लोग खाते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है हमारे शरीर में जो बीमारियां डेवलप होने का। तो फास्ट फूड का सेवन इसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए, हो सके तो ना करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो प्रिजर्व्ड आइटम्स होते हैं, जितने भी पैक्ड फूड होते हैं, इनसे हमको बचना चाहिए। हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए और जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैदा है या बिस्किट है या केक्स हैं, पेस्ट्री हैं, ये सब रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको खाने से बचना चाहिए। और तेल वाली चीजें जो होती हैं, बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें, उनको खाने से बचना चाहिए। खाने में फलों का पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फल जो होते हैं वो प्रकृति के हिसाब से बने होते हैं और हमारे लिए जो है वो हमारे शरीर हमारे डाइजेशन के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। पहली बात तो ये कोशिश करें कि हमेशा ताजा खाना खाएं, बासी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और कटे हुए फल या कटी हुई सब्जियां रख देते हैं लोग, उसके बाद उसका सेवन करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अक्सर फ्रिज में रख देते हैं खाना लोग, फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद उसको निकाल के गर्म करते हैं। तो कभी भी कोशिश, अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता भी है कि फ्रिज में रखना पड़ता है, तो उसको गर्म ना करें, उसको निकाल के जैसे, क्योंकि गर्म करने से क्या होता है, अगर उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो गया है तो गर्म करने से वो बैक्टीरिया मरता है और वो अपने टॉक्सिन्स उसमें छोड़ देता है, तो वो टॉक्सिन्स जो है वो जहरीले होते हैं, उन्हीं से इन्फेक्शन और परेशानी बढ़ती है। तो इसलिए ऐसी चीजें जो खुला हुआ खाना है या कटा हुआ खाना है, फल है, इस तरह की चीजें, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ताजा खाना कोशिश करनी चाहिए कि ताजा खाना ही खाएं।
1: जी, तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमर शुक्ला, और डॉक्टर साहब ने हमें पाचन संबंधी जो भी विकार बताए हैं और इससे संबंधी जो बचने के उपाय बताए हैं, हमें इन्हें अपनाना होगा और इन्हें अपना कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दिनेंतस डॉक्टर अंबुज शुक्लेकनर तेलुगुसिस को लाटी सोई गई यानी निपिन मीडियम वाइव दोनों एफ एम एकेडियो आकाशवाणी करगिलिन वास्पतु सोतगाना मैटसम चु सो आसों सु कसता प्रोग्राम शेर बना चुई फिर अपरा चुगेतियन मजद प्रोग्राम प्रो चुकन पिन सकीना बानो
3: अस्सलामु अलैकुम आकाशवाणी करगिल कना फ्रचुक पयुतपी प्रोग्राम शेरबा नचुमजुबी असलखुरे गायां छर्सि गंतंगना स्कथुक छेनुत गची शितिना जुना सलामपो फ्रतमोचन सोशिक यालेरिन मोछे प्रोग्रामर गलुक जखन शर्मा छुनचे अछेनोमो ककफोनोन रदयांग मजगेत यंतंग गार गार जुक्से योत नसंग ननमित छनमित रगम जुक्से दुक्तुक सगवासिसनल्ला प्रोग्रामी छिरपो प्रोग्रामी गोजुकपेका इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स दिखातुसपेका गाजेंतंग सखपास पेरेरिक फ्रचुगेत कसेता प्रोग्राम पोला गोजुकबेत इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स लोबिंगमा जूनी छेस निशुर सबगुआ मल्लख्योंगमा छाचुक दिजकपो ट्रॉपिकल रीजन कुनी खाकचेस कोरला मीमांग सुन फागोस प्रलचस यांग दियांग नुकछेन योत खान स्कप्स कुन यांग दियांग नुकछेन योत खान चैलेंज कुन नक्सबर्दोन दून इसकोरला शेस्तांग चस्पो इंचुक ट्रॉपिकल रीजन्स गती मियुल इथोगे या गती मियुल पेका अर्थ पेका लेक सिना इम्पोर्टेंट खाकचन पुएक इंसुक गावयांग नुक गतंगा दियांग नुक लेक सिना बायोडाइवर्सिटी लेक सिना रिच योते इंसुक गंग से योते इंसुक बायोडाइवर्सिटी से बना गतेस चंगमा लक्सुक गती ब्योलसोंस कोन दुन सगा गतेस बायोडाइवर्सिटी जस्टेस इनांग नी ट्रॉपिकल रीजन सुनिया नुक ती ब्योलसोंस जेरना चंगमा लक्सुक जेरना ngati qudrat itam shiknatanga natural resource yung matang dun gang myanu gang syutpi malche ginsuk tropical regions kun biodiversity na yambo yambo dyang nuk ngatanga forest kun junglelat kun yang dyana tsoxla dyang yot khani mimang sunya nuk lake sinar gyalar gyala ya lokso cream srik ngatanga thongma chaches insuk tropical regions kun ya ट्रॉपिक्स नतिस चेजर्स चेज इन न कतो ट्रॉपिक्स दे मलसान लजर्स चेज इन सो गाव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोनी बर यानुक देश की लियानुक नतंगा गा रीजन्स कुन गा युल कुन गा नतंगा रियस्ट्रिट कुन दे नंगल जोंस योतंग दोन लंगतेस ट्रॉपिक्स जर्स चेज इन सो दोन मो अनुशेस इन सो न्यंबो न्यंबो दिया नुक नतंगा छेरपा लेक्सिना अर्ग्याला बसे योंचस इन सो ट्रॉपिकल रीजन्स कुन हजारों जरना या स्तों इर्तिस्यानुक ला इर्तिस्यानुक प्लांट स्पीशीज कुन चंगमा लक्सुगी लक्सो लक्सो कसुमुन यद्या चुक्सला ngatanga rare animals kun bil songs kun rain forest kun coral reefs kun dune gangme ngati duksa ya brangsa khorang

कि माहौल पे अनु ngates ngen mesa pulchama degrade जो है डिफोरेस्टेशन भी इंसान का, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल पो बड़ी सुं, ऑक्सीजन लेवल पो कम सुं, जिसकी वजह से ngatanga ग्लोबल वार्मिंग आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में देखने को ngatanga थोंगे। दो मेन मा यहाँ दूसरा चीची पो ngatanga पॉल्यूशन, जैसे कि दोस बसे ngati माहौल पो ngati हवा गंदा सुं, हवा नु ngatanga ऑक्सीजन लेवल पो ज्यादा उत्पिन पहला ngatanga डिफोरेस्टेशन बहुत से पहला ngatanga ज्यादा चकमा लाक्सुस उत्पिन, जिसकी वजह से ngatanga ठीक ठाक बारिश आ छचिन ngati फसल सा नुकसान आने छचमिन। और दूसरा ngatanga दी चामा लाक्सुस निस सावांग खुंतेस कुंती रूट नयन मो कुंती पटक नयन मो थाम से जक्सिन, जिसकी वजह से ngata टॉप सेल पो इरोड छचमिन इरोजन छचमिन दसम दु कटे बेंचना का, तो एक तो ngata सॉइल इरोजन आसु सॉइल डिग्रेडेशन आसु ngati सॉइल सॉइल जो है क्वालिटी वन छते सु छना दु सोगा डिग्रेड छेन छचिन ngata दु ngati सु पॉल्यूशन अनु ngati डिफोरेस्टेशन अनु ची बस ngata ngati इकोसिस्टम पर डिग्रेड बेत। यहाँ पॉल्यूशन आता ना आता आती छू सा गंदा बेट गाते संगाती सॉइल पॉन्ड गंदा सुन, दूसरा आती छू ची वैसा गंदा बेट गाते ज्ञान मैसा पो जैसे कि गाती लग तो फैक्ट्री सा गाने या केमिकल फैक्ट्री सा नो ज्यादातर गाता केमिकल सा देने छना दे स्वेज सिस्टम पर इन्ना गाती खा मा दे स्वेज सिस्टम इन्ना वो सारे गाता गाती दी छुया नुता माने छुया नुतखने जानवरों छुया नुतखने प्लांट सा दोन सा गामा कोई हैबिटेट पर लॉस हूँ, जिसकी वजह से गाती वाटर पॉल्यूशन आंग आता छात्र जूस बस गति इको सिस्टम पर डिग्रेड छचिन। तीसरा पॉइंट पों आता जैसे कि ज्यादातर माइनिंग ना कंस्ट्रक्शन बेत गाते माइनिंग अनु जैसे कि गति जोर कंस्ट्रक्शन बेत गाता माइनिंग अनुस्थान गामा नांगोस पेन गाता कोल फिंग मिफिया, या दूसरा गाता कंस्ट्रक्शन गति बिल्डिंग बिल्डिंग या गाता इंडस्ट्री सक्टर दिया में गाता गाती मनफाती फे इंडस्ट्री बिल्डिंग सक्ता, जिसकी वजह से गति सॉइल पर डिग्रेड छे, जिसकी वजह से गति इको सिस्टम अनुक तवाजुन अनुक यहाँ दखल हुआ, जिसकी वजह से आता इको सिस्टम डिग्रेड छा थोंगत। यहाँ चीज आता हाँ नेचुरल रिसोर्स कुलिया कुलिया खत्म छे दून सक्षना, एक तो आता हाँ सॉयल जो आती नेचुरल रिसोर्स जैसा आता थो बता, या दूसरा आती छुई इन्ना आती से इन्ना आती हवा खुरा इन्ना का, तो दून गाँव मांग आता हाँ डिग्रेड छा थोंगत। यहाँ चीज आता हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक चेंज आता छा थोंगत, आते दिया से आते से डिफोरेस्टेशन बेद आते पॉल्यूशन बेद दो, उसकी वजह से आता ज्यादातर आता रक्षम थो तंग आती है दीर माहौल खुरिया नो आती आब हवा शाम से क्लाइमेट चेंज है दुख दुख स्पिरकिल्ला लिप नम खुर्चो दुख स्पिरकिल्ला नाम पोसिंग था से लिप छत चो छना दून गा मांग आता इको सिस्टम डिग्रेडेशन अनुक छात होंगे दून सक मांग आती ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से। यहाँ चीचें आता ज्यादातर अर्बनाइजेशन यहाँ पॉइंट चीचिलता ना अर्बनाइजेशन यहाँ ज्यादातर आता सिटीज ना ज्यादा बिल्डिंग सक राज सुन ज्यादातर मीन सक रूरल एरिया दुख पवाजिक अर्बन एरिया नुक यूं सीधे अनुबासी छाने का, तो पॉपुलेशन आ बड़ी सुन, जिसकी वजह से वहाँ आता दे सीटी अनुक पॉल्यूशन आ बड़ी सुन, और जिसकी वजह से आता इको सिस्टम अनुक डिग्रेडेशन छा थोंगे। यहाँ चीचिंग आता है इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिस, यह ना जरा आती इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिस पो दोस बस आता है ये जो है आती इको सिस्टम जो है डिग्रेड होते जा रहा है छना का, तो दी सक वजह का आती इको सिस्टम पो नेचुरल बैलेंस पो चीज है जमाना का, तो खुरी तवाजुन का मालूस पा बिगड़ी छे, जिसकी वजह से आता है इको सिस्टम पो डिग्रेड छात्र होगा, या जो है दूसरों आता है इको सिस्टम पो का सो डिग्रेड छिन गति माहौल है अनुक तो देर गया नंगा जिंदा से इको सिस्टम पो रिस्टोरेशन पो टाइप पो का सो जो गति का सो इको सिस्टम पो गति माहौलियती गति तवाजुन पो गति निजाम पो का सो गति रिस्टोर बचिन माहौलियती बहाल पो गति माहौलियत माहौलियत को बहाल बचिन का सो गति इको सिस्टम पो रिस्टोर बचिन दे टाइप आना सब बस पहला आता है रिफोरेस्टेशन बचा मेन टाइप पो आता है रिफोरेस्टेशन यान में हिसाब पो गति गतेज गति मनफाई दिफे अगर का तो चामे एक चाहते नहीं उतना का तो एक चामा चढ़ना का तो दे एक चामे बुझाएगी गतेज दस चामा यंग ची चुप पर गोशा, ताकि गति माहौल पो बैलेंस लूस है गति इन्वायरमेंट अनुचांग गति इकोसिस्टम पे अनुचांग दखल नहीं होमा में। दूसरा आता रिफोरेस्टेशन पो सुन दूसरा एफ आता एफोरेस्टेशन जहाँ पे आता ज्यादातर फॉरेस्ट मेट ओदो न्यानुक ज्ञान में हिसाब पुंग आतेस नतिल चामा लाक्सुस ता से दोन साक सेरा बेकोशिश बचा। तीसरा पॉइंट पुंग आता हाँ नती जैसे कि तालाब योत नती झील योत नती रिवर योत छुकान साक दोन सा ज्ञान में हिसाब पुंग आतेस तेन दुक्चा की पानी कम का तो छामिनुगा
जानेगा तो उसको किस

0: estas barana he don sanganu ngates word restoration jere tang din din practice un ngates bacha yang chotha type pong ata soil restoration jese ki ngates erosion soil erosion ngata chatum ताकि दे इरोड छखनी सोयल पॉपुलेट छखनी सोयल पोंग आतेस किस तरह से आतेस एक फर्टाइल सोयल जरखेस सेक जो से आता ऑर्गेनिक जिस पर आता ऑर्गेनिक फार्मिंग बचा या आतेस कंपोजिट सिस्टम चेता आती लुट सकता से जिसकी वजह से आता ध्यान हो कि यहाँ आता जो है चावल अफसूस किया ना दिल चावल अफसूस सोयल इरोजन को कम कंट्रोल करने में मदद करता है। यहाँ यार पाँचवा टाइप पोंग आते छि बसे इको सिस्टम पर रिस्टोर बचिन ध्यान होगा ता नति ओशन नति समंदर उन्ना नति कोस्टल एरिया जो साहिली इलाका ने जो समंदर की किनारे हुए है छना दोन सवानु आता रिस्टोर बचा दोन कोरल रीफ जैसे कि कोरल रीफ जरना तो छी नंगो से गरा आयो छिन यंग अदा ऑर्गेनिज्म ओचिन ओदोन सक या नति खरखोल लतखनी समंदर खरखोल लतखनी दे एरिया सा ओदे समंदर खुरिया उत्खनी हैबिटेट उन दोन संगाते सी वैसे प्रोटेक्शन बचन और जी वैसे संगाते उदो प्रोटेक्शन बचा जिसकी वजह से गाते ओशन और कोस्टल एरिया को भी क्या कर सकते हैं नाते रिस्टोर बाइंग एंशन। यहाँ चीज पॉइंट चीज रहा अर्बन इकोसिस्टम दो अर्बन इकोसिस्टम पर गाते सी वैसे रिस्टोर बचन जैसे कि गाती ज़्यादातर सिटीज में गाता आंगन वैसा पो पार्क चोचा ग्रीन रूफ चोचा गाता रेन गार्डन सक चोचा और जैसे कि गाती बायोडाइवर्सिटी जोन पोंगातेस ओदिया नुक बड़ी एक बसिस चोचा जिसकी वजह से गातेस अर्बन एरिया वांग एक गाता एक अच्छा इकोसिस्टम गातेस चुआ ग्यानसिन। और चौथा यहाँ पॉइंट चीचिंग गाता वाइल्ड लाइफ हैबिटेट पोंगाती जो जंगली जानवरों का जो हैबिटेट है उनका रहन सहन है तो ओदो आंगातेज रिस्टोर बचा ध्यान उंगाता आंगाती जानवर सा खुंती नेचुरल खामा उंगाती खो फॉरेस्ट इन्ना जैसे कि ग्रासलैंड इन्ना वाइल्ड लैंड इन्ना ओदो ने दुक पतंग खों खो आंगन में सा पो ओदो फिर से आंगाता एक अच्छा या क्लीन एंड ग्रीन जो है माहौल चिखो प्रोवाइड बचा। अब इसके बाद दिन सो गाता टाइप चीखा गाते इको सिस्टम पो रिस्टोर बचिन यंग इम्पोर्टेंट पार्ट पर गाता रिस्टोरेशन सिस्टम पो इको सिस्टम पो हम किस तरह से जो है इम्पोर्टेंट ऑफ जो इको सिस्टम रिस्टोर पो गाता चाम से खर्चन चाम से जरूरी देश को लजना सक बच से पहला दू का तो गाते इको सिस्टम पो रिस्टोर तो गाता इम्पोर्टेंट पो गाता एक तो गाता चेंज में सक बच से पहला गाती क्लाइमेट चेंज जैसे कि गाते ज्यादातर ट्री जो है गाते प्रोड्यूस बन गाते एफोरेस्टेशन में जिसकी वजह से गाती माहौल है उत्खनी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल पर कम ऑक्सीजन लेवल पर ज्यादा छना ताकि गाता एक अच्छा और एक साफ और शिफाफ हवा मिल जाएगा गाता साफ शिफाफ हवा तो माना गा तो गाता दे माहौल पे अनुक आराम के साथ जिंदगी बागान एक इम्पोर्टेंट ड्यू। दूसरा गाता गाती बायोडाइवर्सिटी जैसे कि गाती प्लांट जेर एनिमल जेर या गाती बर्ड सेल जेर दोन गामा और सर्वाइव आगे छिन जिंदगी या जिसके तीसरा गाता गाती छुई क्वालिटी वाची सचिन इम्प्रूव सचिन गाते अगर का तो इको सिस्टम पर रिस्टोर बना जिसमें गाता छुका निंदा गाती जो है लुम्बा साउखानी गाती छुमी गुन इन नगा तो छुका निंदा गा तो गाती अंडरग्राउंड वाटर दोन गामा इन नगा तो दोन एन क्वालिटी चीज सचिन इम्प्रूव सचिन जिसकी वजह से गाता गाती वाटर पोल्यूशन पहुंची से कम से। तीसरा यहाँ पॉइंट चीज करना यंता गाती फूड सिक्योरिटी गाता इको सिस्टम पर रिस्टोर माना का तो छेद जिसमें गाता अच्छा गाता साउ खुरा लखमो से एक छा तो जानो क्रोप बिंखा क्रोप गाता चीज फसल पंग लखमो एक छेद यहाँ पॉइंट चीज कह रहा गाता जैसे कि कुदरती आफात संगत नेचुरल डिजास्टर फ्लड होंगे या ज्यादातर गाता जो है बारिश होने से गाता फ्लड होंगे या स्नो एवलांच होंगे चाहे गाती मिसाल के तौर अर्थक्वेक होंगे दोन सा गाँव में गाते शिवेद या तूफान होंगे दोन सा गाँव में गाता कम भांग एंशिन दी गाते इको सिस्टम रेस्टोरेशन पो गाते बसे। यहाँ आखिरी पॉइंट चीचिक दे पॉइंट चीचिक पे गाते गाती सेहत पो इंसानी सेहत पहुंची जत इम्प्रूव आगे नेत
1: बख्शीस दे सखपा एंटेस मोहम्मद हुसैन कना इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इस कोला स्पेरेरी गास नंगा बिनुक पिन दियांग मजगे एंटेस दी स्पेरे कना फन खेले ने दुख दुख देनाना न्यंबो दिदिंगी प्रोग्रामी तुस पुसंग थामा थोनिन दुख नन मेट लुसना यांग यंतंग न्यंबो स्क

0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: समारोह में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाशने, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित
2: किया। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का

0: प्रत्यार्जन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। President Draupadi Murmu presented gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Vashne, Lieutenant General Vikas Rohela, Lieutenant General Harvinder Singh Vandra and Lieutenant General Mohinder Pal Singh were awarded Ati Vishisht Seva Medal. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of armed forces are also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi today said that his visit to Seychelles has been full of substantive outcomes that will boost India-Seychelles friendship. In a social media post, the Prime Minister said that during the past 50 years, the relationship between the two countries has been marked by deep trust and shared progress, while the next 50 years will be defined by innovation, sustainability and shared prosperity. He also expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermione, the government and people of Seychelles for their affection. The governments of Haryana and Rajasthan signed an agreement for the construction and implementation of the Yamuna Water Project in the presence of Home Minister Amit Shah in New Delhi today. Speaking on the occasion, the Home Minister said the agreement has resolved the nearly three-decade-old water-related problem faced by the people of Haryana and Rajasthan. Under the agreement, approximately 580 million cubic meters of water will be supplied from the Yamuna Canal to Rajasthan through three underground pipelines from the next month to October. A Delhi court today extended till July 11 the judicial custody of 10 accused in the NEET UG 2026 paper leak case being investigated by the Central Bureau of Investigation or CBI. Earlier on 15th June, the Rouse Avenue Court had extended the judicial custody of the 10 accused till today. The CBI has so far arrested 13 accused in the case and is investigating an alleged network involved in procuring and circulating NEET UG question papers ahead of the examination. Foreign Secretary Vikram Misri today dismissed reports claiming that India and Pakistan held a track 2 dialogue on the sidelines of a security conference held in Sri Lanka. Responding to questions, Mr. Misri said, such interactions are neither new nor recognized by the Indian government. Foreign Secretary said that as far as the Indian government is concerned,

0: There is no official participation, support, or involvement in events like these. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom. Mr. Goyal met the Development Minister of Greece, Takis Theodorakakos, today. Mr. Goyal said they discussed strengthening the India-Greece economic partnership through greater trade, investment, industrial cooperation, and resilient supply chains. He added that they also explored opportunities to deepen collaboration in manufacturing, startups, and emerging technologies for the shared prosperity of both the nations. India's industrial output growth, as measured by the Index of Industrial Production, or IIP, expanded by 5.1% in May this year on an annual basis. As per the data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, or MOSPI, growth in the electricity and gas supply sector expanded by 9.9% during the last month. Manufacturing, as well as water supply, sewerage, and waste management sectors posted a 5.5% growth. However, mining and quarrying sector proved to be a laggard, decelerating by 1.6%. An Indian Army field hospital deployed in earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad has become fully operational. It is providing free, round-the-clock medical services to the people of Venezuela. The Indian Embassy in Venezuela said an Indian medical team comprising experienced doctors has established a camp at the International La Rinconada racetrack in Caracas. It said the medical camp is now fully operational and services are open 24/7. Benchmark domestic equity indices ended almost 0.5% down today. Sensex fell 372 points to close at 76,728, while Nifty also dropped to settle at 23,946. And that is the end of this news bulletin.
1: در انتظار آکاشوانی دهلی کنن خبرون لعنتی نیت بین میریم وای بدون افهمی که تو آکاشوانی کریلین
2: دادی کون سا پلانت ہے
3: تینجرین بہت میٹھا ہوتا ہے توڑنا نہیں ہے
4: فری فورن ٹرپ کلک آن دا لنک ابھی کرتا ہوں
2: دادی رکو لنک میں کلک مت کرنا
4: کیوں
2: یہ ایس ایم ایس سکیم ہے کلک کرو گے تو آپ کے بینک ڈیٹیلز ہوں گے چوری
4: تھینکس گپو बचा लिया ये ले तेरी समझदारी का फल
5: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो
6: कूल रहो
7: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in
8: रंगी बिजनेस उन लस्के तंगमिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंलेनुन लोकल इन या फायुली थोकिकाइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सब लेपीस कप्स मांगमो दरने अंतिस नंग या दफ्तर या हटी का जुक सनंग बांग अंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंग इन से युत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का
9: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख
10: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प
9: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग
10: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता
9: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700014242 पर
1: میڈیم ویو دون ایف ایم کدیو آکاشوانی کرگلین وسپت سترک نمبر چوکا سنسو کستا شینس ختم استود خریق

0: Gospa dinam zang di mehngai dor pa yang chicken ar sot pamar gospa rang is kamai ba se rang is achino me in nang so in nang mada chi ba cha cha chen ju ya di kana
1: sak pas nan la tang atna tak saha achino me ga ga mil che na ga to kho sab se pehla tailoring chik sab to sam se kho shok chika to chana ya la chik kho shok chika to chana ga to ya ga chuk lung cha nok shok chika to chana ga to dilas po bok pa hala sam se sam be ka to yona ga to kho ga chuk sam be khure las bar go shadok
0: खोज मतलब ठीक है मना देना मैं बार क्वेश्चन जो कि हस बुक अस्कियां बुक नंग लंग बुक मन में
1: बिल्कुल
0: समझा
1: भैया
0: जो है जो असंग तक कचुक लाशीन न को मना कचुक मेहनत चीन न मतलब
1: ये लेवा
0: लाचीगिन सेम
1: फुटबा
0: चीगिन मना जाक में पूछा एरे में पूछा नमजा मापुत पा गतिस गतिस हला अस्किल साबित पक्कल साबित समसना देना लस पुंग अतिस शोक स्मॉल सब चंग जो है न्यान में सब पुंग अतिस दक्ष शोक योद पेकल सब चा क्योंकि नतां दुछ हते जो बरगा नतां दुल सब शोक चे सों से न यंग अतिस जो अतिस गलमेत बसे छोचुक पाथा दुंग अतिस मी बचा गलमेत मन में बच्चे न्यान मी सपो दाले मी दुखचा गतंग मना कभी न्याल बचन चाचा में जो अगर रंग मेहनत बसे रंग गुम्बी का क्षण दंगतंग कभी यंग चेकियर बा रुगोशा
1: बिल्कुल
0: संग मेन और
1: बिल्कुल
0: गतंग गरीबी कभी यंग चाच मेन
1: मखशीज नमो छाना नहीं दा टेलरिंग का अच्छी नमो चीज बना का तुम्हारा तंत्र सा गवर्नमेंट निस्तम से सपोर्ट
0: कसम
1: भी दो गवर्नमेंट निसा दां देरी गाता युल युल कंसलर
0: कसम
1: जो
0: जो
1: ता सब्सिडी का
0: मखशीज
1: मशीन ता जजना या
0: कसम कमा फिजो कसाल
1: अलजाजी
0: सावे और
1: उर्गुन
0: फिला
1: लहां कुआ ट्रेनिंग ता जस्पो छाना दिन सख यो तिन ची का अच्छी नमी किन्ना का तो टेलरिंग की का कि गाता हाई बसे गुंची अखुश चेचेम बखेर बमरगोस राय ना पो राय तासे राय गुंची किन्ना चेम से
0: मनचा
1: राय खरखुर पानी इन्ना चेम बना
0: नोपस
1: राय इनकम चिक दिन ऐसे चादो पे हजू
0: रंग लोप सियोत पना अते यंग चंग सबे या तो ना रंग
1: कुआ
0: ही बोस पंपे यंग अच्छा नोमी का इन्ना देखना रोजगार चीचे मन दल मन मितुक चाजो गवर्नमेंट दिस क्यों मुनि कनाते फायदा लें चा तक्षण योल योल ला हजो
1: बिल्कुल
0: टेलरिंग मतलब लच्चा सी नंग सेंटर तंग सो जो गवर्नमेंट इस टेलरिंग
1: युल्ला
0: तंग ना हर
1: ट्रेनिंग
0: ते मैंने
1: बच्चा
0: गतंग
1: ना
0: रासु नंग कौनस फ्री तंग मात या दिस्कुट पा नंग गतंग फ्री तंग मात उतुन गतेस शुक्स मो मना दिस्कुट पा जल्दी बल्दी मना जाओ फुते ना चुंग मी चुंग चा दे कंगते फायदे लें चा दे कदल बसे गते दे 3 महीना लोप शुचा इम ला मी लोप्स कने अच्छी नमुला लाल
1: मुलामी
0: सच्चा
1: सच्चा
0: उदिस कुत्पन देमो बसे ला से चुंग चा जो हजो अतां देना
1: बिल्कुल
0: फायदे लें चा या
1: बिल्कुल नमो ये तो
0: कसा
1: माने सही मोल से जब ना आता थोन दे कि
0: क्योंकि
1: मो अच्छे नमो इन का कफोनो इन का
0: बख्शेस
1: गवर्नमेंट सिक्किम चिक तो सिक्किम पे
0: गाइना
1: यों पु बस
0: बस
1: माने
0: बस
1: कश्पार पासे
0: बस
1: इन द
0: जो
1: बेंजो दे
0: कसा
1: करना माने
0: कसा
1: गवर्नमेंट निकना का सिक्किम ची करना दे करना का चीज पु थोप चौदा को दे थोप चुन
0: कस
1: दो थोप थोप कश्पार बेंदो
0: कसा
1: ले थोप
0: जो
1: आना जहाँ दे चोर
0: ओ
1: जैसे
0: या
1: ना
0: कसा जो
1: इन द बेंदो लेट दो गेंदो छाने नहीं
0: बख्शेस
1: आता का चुप लाशीन ना तक्षा ता युल युल ला तक्षा दे दिन द डिपार्टमेंट जाने इन ना युल युल ला सों से कुआ ट्रेनिंग था जैसे कि
0: कसा
1: आता थोंग मचे एग्रीकल्चर थ्रू या केवीके थ्रू इनका युल युल ला सों से सुन मतलब चल सब चल ना या
0: कसा
1: माना स्पोचेस इन या मशरूम चोचेस इन दून सब मशरूम तब चेसी इन यून
0: यस
1: गांग में आता ट्रेनिंग था मतंग और उदी ट्रेनिंग उन आता है जो नमो उदी ट्रेनिंग
0: मुनि
1: उन
0: कना
1: तरफ नहीं
0: फायदा लें
1: खेल लेने का
0: चाहिए
1: तो
0: कसा
1: जाए रोजगार से चाहिए तो
0: म ओ जो कसा मना फायदा जो गतां ती मतलब टेलरिंग उन इन्नां ती दक्षिण से लेफेल बट जो है जो
1: बिल्कुल अमर
0: दुनिया
1: चोस
0: नुना गते फायदा लें चाहिए दुनिया गते मतलब बिल्कुल जाया मिचा चुक चांग गते क्यों सेना राशि इतना गवर्नमेंट स्थान आते रहते मो बस इंजन में सपोर्ट ट्रेन युद्ध खानों ने इन लल सब से या खुन तेरते मो बस सेम से दी रसुन मतलब बेकार चाहते तो सोच सेम से यूनिटे पुन्चा तंग से सेम से ना मिजक चा लेकिन ट्रेन युद्ध खानों ने इन लते मो बस सब से दिया ना रस पुर देमो बस सेम से दी कना गाते प्रॉफिट लें चांग जो यार देमो बस सेम
1: मशीन
0: सामने दिया सेम लवा गाता बिंग दे रस पंग गवर्नमेंट फ्री सो उदो निकना गाते हमेशा फायदा लें चा जो कसा
1: मशीन नमो मनर येला मो छना नी लजुक पे कयर इस नति प्रोग्रामर के लोग जखान का कफोनो अच्छी नमो सगेती प्रोग्रामर के लोग जखान का कफोनो ला छना येरे जेरी चिप्रिंच ले येरे या जलते गेरिस प्रोचो दो समेत
0: कसा जो निदा जलता इन अतंग अच्छे नमून गंग मा चाहे गाम युल इन चाहे शहर इन सिलखान इन या मसिलखान क्योंकि दाले उत खान सिले नंग दाले उत हजो दुन गंग में फिला इन या दा चोंग दाले उत नतंग अच्छे नमून दाले मन मितुक चांगियन मेसा पुरान रोजी भी कोशिश बचा या रंग गोम्बी का क्षंस भी कोशिश बचा गतिस
1: या
0: हजो
1: चीज
0: यंग
1: का
0: चेकियर
1: डिपार्टमेंट
0: मन
1: में
0: मे
1: दो
0: बचा जो
1: बिल्कुल
0: कसा यान मेसा पुंगारे दीदिया बुक अस्किया बुक मन मे सम चो मेहनत बसे रंग लक्ष्य पो आगे खेरे दिन खाना फायदा लें चा दिया इन चो नी आखिरी जलते
1: बख्शीज नमो मनर यला मोल रियामा जगेत नती प्रोग्रामर का लोग जकान का कफनो अच्छे नमो नीस यदि जलते का अमल बसेगा का कफने का अच्छे नमे का गा तो सुनर ची या लक्ष्य शिक्षित न कतो दे लक्ष्य स्पो इस बसे जक मजक पा फिंग से रंग ना शोक बसे दे लूं पियनुक लज बसे युल्ला यरगेस क्यों मी प्रलुक्स बना कतो इंशाल्लाह नती युल पियनुक न्यल बचन ची मलुस पा सक यरगेस रुल्ला छे चोगो स्त्रोल ची

0: लजुक पिका नमो से कि नांगा जेरा या सरचिक उजु छेरु मजरे तुसुसे आकाशवाणी कर के लिए स्टूडियो आस क्यों चस्पुला उजु छेरु मो अस्सलाम वालेकुम
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: दरे सकपेंतेस नमो से कि ना बानुई कना टिसु एक नेन चुतपिन टेलरिंग स्कूल ला कसता सेगत प्रोग्रामी छासे का अखुन बाकेर जीशान इसका त्यानो सखमस्तुत केक नेन मजात
2: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

0: tuk zaba na nga te sports bo na sabak po yambo jagan cha na katun ek pya na niska yambo combine son se age nga ta la zo shik nga ta age bare ha chin da na nga cycle se na tanga pate mit pindian chi ba chi mi bat sabse pehla to dia ma discipline सबसे पहला रोल सब हिंदू हाँ ऐसे बैठना है ऐसे खाना है ऐसे पीना है ऐसे बात करना है बड़ों से कैसे बात करना है कैसे बैठना है और तुम गांव में करना हाँ देन कोश होने वाला जो ना बहुत मतलब सपोर्ट बखान गांव में दिन सा पे अचान चाँ प्रॉब्लम या पेने प्रॉब्लम ये भी होगा तो गाँव में आना खोज नाची सात तांसुत और खोई अच्छा मतलब माँ बहुत शुक्रिया था विनोद गांसना मतलब हाँ बाकी स्टूडेंट ना मतलब खोई संजर बात पा कि गाता तो कोश थो दी फायदा लेन मर खुशी और दिया गा चाँ सा हॉस्टल का जर ना कहतुन गंगमा फ्री चंग मतलब पीने वीने और डाइट उत बहुत अच्छा खासा वाला हाँ जो कि गाता गाती ना होना मिथो पत मोतो ना हमेशा ठूल छिना मिता गाचा हमेशा ठूल तंग मत मोतो का या फ्रूट्स तंग मत या ऑरिजिन तंग मत मतलब बहुत चीज उत पाया कि हॉस्टल हाँ डाइट ही ना मा ना चाँ चाँ शिकायत हमें हाँ और एक डाइट ना मैं मोदू ना फ्रून हेल्थी लुशिन और मतलब जंक फूड ज्यादा मिजाज पर पाया उदय सभी का ना फ्रून ठीक लूज सेहतमंद लूज एक तरह से अति हेल्थी फील लगाते मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी बिंदु पर मशीन हाँ उदय रिलेटेड यंग जर ना दक्षा गाचांग मेज लसों सिन एक गाचांग पहला गाचांग लखनऊ सोमिन साई हाँ साई थ्रू सोमिन आध्यांग स्पिन ब्रॉन्स आध्यांग मतलब फायदा सुन कि मतलब बाहरी दुनिया सुन से दौलता से उन लोगों के से बात करना है बाहरी दुनिया तो हमारा गाता कोले कोले पता छिंदू कैसे मतलब दुख परोशिन गाँच कॉम्पिटिशन बढ़ाई छिंदू ये वे जरे अरु नया वो मतलब एक्सप्लोर छिन पाया दुनिया चाह में हाँ यहाँ चीची गाचा सुन मीन एम्पिया और दया मतलब गोल्ड खो में फिल्ला या ब्रॉन्ज खो में फिल्ला पांच नंबर आठ चार को सुनो सुनिए वेट कैटेगरी सभी का देना ये सिकर गया लेना गाते कहना लूज पाया था हाँ अदे कहना फिर भी चंग मतलब इम्प्रूवमेंट रही हूँ सोचो हॉस्टल का दुख से दा चुक सभा से नक्सा गाचा यहाँ हॉस्टल के जा सो तो वोकेशन ही दया नक्सा गाचा यहाँ मेष सचिन दो मेन पाँच अदे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट चम चिटूल से नंगी ना गाँव में गोल्ड हाँ देन मतलब उदय वजह से सर्टिफिकेट दुन गाँव मंगा था आगे ला सो चिन या ये फैमिली से मैं खीमो सपोर्ट हम बस दे खिलाफ ठीक इन स्टेर कोशिन सर्टिफिकेट उन तालार क्या बिना ला सुनते सबक नहीं अम्बो अम्बो चाहे एंट्री वेंट्री अच्छा ना कतुन और टाइफोंडे से ना कतुन सबसे पहला तो गाता वो मुझ सबसे ज्यादा खास है वो मैं फील ठीक इन पा क्योंकि खून बाहर सिल बचे दस अच्छे राय हिफाजत ची भी फील तुल सबसे चक्सा ठीक इन गत सुगा एन अम्बो मतलब फाइट बार कोशिन ची बस मतलब छुट पर रोशन माया खुए आस पास ची छेंदु का चेंज सों सुते मतलब सख एक चौशन में उम्र था दाना बाहर दुनिया पे ना मार बरे में तो दूना दांग कारगिल जर्ज चालो दिया इतना तो चंग मिशाल बाहर लगा था सिल्बा खाची खाची मतलब यहाँ स्पोर्ट्स यहाँ ये भी अतुन गंग मा अधे हिसाब का ताना अधे गते दिस स्पोर्ट्स जो बना बोमो सा फिल्ला मतलब सा से डिफेंस फिल्ला ठीक इन पाया और कभी भी मतलब उस गाते एक बार बाहर चौशना गाता और तुम मांगे चीन गाता मतलब क्रिक विक दस चौशना ची बना मतलब डिफेंस बाइन चिंग वजह से का और इन मिसा पर हेल्दी लोशन स्पोर्ट्स सीधा ना आज स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा
1: अच्छा देख करना जैसे कि यार इस नालों में सबक पुने अंबा अंबों गाते जो गेम चिक यार इस टेकेंडो जा सकते मालो जैसे कि साई का आता डिसिप्लिन मिस मैंने में यार टेकेंडो या बॉक्सिंग जरे स्नल लंगस गोमा यार जो जैसे कि इसकी गाते सिर्फ गेम पुतर से समय गाता सबक मुंह में खमेत नंबो लूस पर गोस आम गाती आतामा सा परेशानी दु छे चिंग गाता जैसे कि गाती फु मामबो जो है गाती खंगमा माजा बाहर ला हॉस्टल लता चा खंगमा जा पाना खुदी फ्रेंड्स आना मुखोर दो दो सास बिन दो फिलान फिस्ता दे रहा बाहर हॉस्टल जगह लेता है बाहर हॉस्टल में सब खर्चा सेट गाता स्कूल खर्चा करा हॉस्टल को खर्चा दूच हॉस्टल पास गाते गेल लगा लेते हॉस्टल पता से गाता ध्यान लाम चिचिक चाहता सबक पता लेकिन दे हॉस्टल में गाता गेम वेम सभी चांग ऑप्शन चाहता मैथ लेकिन दी हॉस्टल पे साई हॉस्टल पे मेनली साई हॉस्टल पे गाता सबक पढ़ा हम वो गेम पहुँचा बिनोद अगर सबक पे गाफी सब काबिल ना आती मैं सुई जहन पो काम रिक सुई जहन पो तेज जो चिन जहन तेज उत्कान पर सबसे साफ पन गेन दुन लछे चांद दिन आती है तमाम लेरस दूच मोल दसन जरा साय के दुख सोत यान तेज गेम पहुंच से हाथ साफ पास सिल बत चंग और तो असर से साय का एडमिशन लेने के अपना यारा ऐरे साफ पे कर सो पोज रेल्ची पोपा थों आकसम देश को लता सिंगल
0: और जो शिन मेरे दोनों फ्रूहरी के डिपेंड जार गोसे अगर को स्पोर्ट्स या ना को मतलब शौक चला जो शिन ना एक तरह से पढ़ाई ना मतलब खुरे चक पर शिन दोनों वाला आदि आगे से फिल ना और अगर को स्पोर्ट्स ना पढ़ाई या बोका तो जक चिन ना को मैनेज बार शिन जो कि सही यूथ एक हॉस्टल इनकी मतलब ओदे मतलब गची सर पर निस गची फिला दा चबा सिंह अच्छा टीचर को गचा हाजी मो को गचा सबक तम फिला या ना हॉस्टल पर स्पोर्ट्स जाय दे फिला को चंग सबक ना को चंग कारो जमीन लेकिन दिस आई हॉस्टल पे तो जो शोट के मतलब यंबे बोंगती मासा भी माती

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: Jangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun localin ya faili torikain akashwani stanchain customer un sapille piece cups mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chiki ka advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donar ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
3: 8700014242। सुनो ना।
2: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: मीडियम वेव दोनों एफ एम कैद आकाशवाणी करगिलिन वस्पतुन नाम छिन्नु कचत आकाशवाणी श्रीनगर कन उर्दी खबर उन्ना तबसरा रिले बेत रिले लाडांग बाजत।

0: फीस तो देखो।
1: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन।
1: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
3: आरबीआई कहता है
4: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

जय हिंद फौजी भाइयों। फिल्मी नगमों पर मैं अपने प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए लेकर आपका दोस्त हाजिर खिदमत हुआ हूँ। प्रोग्राम समाप्त करने वाले तमाम फौजी भाइयों की खिदमत में आपका दोस्त यानी मेरा प्यार भरा आदाब। लीजिए फौजी भाइयों, प्रोग्राम के आगाज़ में पेश खिदमत है अभिजीत और कविता कृष्णा मूर्ति की आवाज़ में दरार फिल्म से ये नगमा।

अभी आप सिर्फ तुम फिल्म से जसपिंदर नवूला और साथियों की आवाज़ में नगमा समाप्त कर रहे थे। प्रोग्राम अभी जारी है, लेते एक छोटा सा वक्फा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश

0: तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित
1: अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के

0: गांवों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद से प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग से प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स टू रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि

0: भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment

0: 2022-23 के तहत अस्तर 9 तश्कील शुदा IIP सीरीज के पहले आदादोशुमार थे, जिसमें जदीद तरीन मसनूआत की फहरिस्त, वजन और मुख्तलिफ शोबों की ज्यादा जामे शमूलियत शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली ने आज मगरबी बंगाल अवामी तहफ़ और समाजी मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में अमन अमान कायम करने के से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी। मजकूरा बिल की हिमायत में 176 वोट हासिल हुए, जबकि मुखालिफत में 41 वोट पड़े, वहीं 20 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस बिल के तहत ऐसे अफराद को जिनकी समाज मुखालिफ सरगर्मियों से आवाम की सलामती, अमन अमान और नज्म व नस्क को खतरा लाहक हो सकता हो, उन्हें एहतियाती तौर पर ज्यादा से ज्यादा 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। हुकूमत के मुताबिक इस कानून का मकसद समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाना, उन्हें सख्त सजा देना और उनकी साजिशी मनसूबाबंदी को नाकाम बनाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान की हुकूमत ने आज नई दिल्ली में जमुना आबी प्रोजेक्ट की तामीर और उस पर अमल दरामद के लिए एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर बात करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस मुफाहमत नामे से हरियाणा और राजस्थान के लोगों को तकरीबन 3 दहाइयों से दरपेश पानी के मसले का हल हो गया है। उन्होंने कहा कि ये मुआहिदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उसूल मुज़ाकरात के जरिए हल की एक बेहतरीन मिसाल है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस मुआहिदे के तहत अगले माह से अक्टूबर तक 3 जेरे जमीन पाइपलाइंस के जरिए यमुना कनाल से राजस्थान को तकरीबन 580 मिलियन क्यूबिक पानी मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पाइपलाइन से दोनों रियासतों के आवाम को पीने का पानी मुहैया हो सकेगा। इस दौरान जल शक्ति के वजीर CR पाटिल ने कहा कि इस मुआहिदे के तहत मानसून के मौसम में राजस्थान के हिस्से का पानी हथनी कुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना कनाल के निजाम के रास्ते बिछाई गई जेरे जमीन पाइपलाइन के जरिए फराहम किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: दिल्ली काबीना ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल EV पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होने वाले 4 साल मरहलेवार रोल आउट के लिए मुकर्रर कसीर जहती फ्रेमवर्क 31 मार्च 2030 तक कौमी दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कार्बन के सिफर इखराज की तरफ मुंतकिल करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बड़े मालियाती इखराजात का अहद करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक तहकीक और तरक्याती प्रोजेक्टों की कारकर्दगी, जवाबदेही और बरवक्त अमलावरी के लिए DRDO DFP 2026 को मालियाती इख्तियारात का एक वफ जारी किया। इस मौके पर जनाब सिंह ने कहा कि DFP 2026 दिफाई अफवाज में तहकीक और तरक्की के एक निजाम से निकलने वाले निजाम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तेज तर पैदावार और शमूलियत में सहूलत फराहम करेगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि हुकूमत ने बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे की तिब्बी सहूलती मराकज में तौसी करके मुल्क के सेहत निजाम को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी कौंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि शहरियों और सेहत निजाम के दरमियान राब्ते के पहले मरकज के तौर पर मुल्क भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए जा चुके हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल बरतानिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद यूनान के एथेंस में एक आला सतही भारतीय कारोबारी वफ की क्यादत कर रहे हैं। जनाब गोयल ने आज यूनान के तरक्यात के वजीर टाकिस थियोडोरी काकोस से मुलाकात की। जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने वसी तर तिजारत, सरमायाकारी, सनती तावुन और लचकदार सप्लाई चेन्स के जरिए भारत यूनान

0: ऊ सिक्स क्लास पहिले 98% खोइ ब्रेन डेभलपमेन्ट छ चिन्छु ख सब पुमाना ठिक बसे कन्सेप्ट पुमा छुटपा आगे सोच फ्रुन्छ ड्रपर छ दोस बसे ख नेरे नेरे सोच आगे सोच सब पुमा लस बसे छनङा त मदर टानु का फोकस न जम न जोरिन छु एनपी अस इन छु कि पाँचौ क्लास तक या प्रिफरेबली एट क्लास तक त मदर टंग युज बोल जिन्छ मदर टंग यानु ख कन्सेप्ट पु क्लियर छ चिन्छु छन दसङ गति कन्टेक्स्ट अनु गति लदा करगिल कन्टेक्स्ट अनु गता गति मदर टंग मन डायलेक्ट मामो पुर्गी बल्टी शीना लद्दाखी जेरे देना हर एरिया नु हर गाउँ नु या जस्कर नु लसो मसो डायलेक्ट अलग अलग फरक लैंग्वेज के चिंग गता जैसे कि गता शीना लैंग्वेज पुर्गी पोल मन चुचा मेन दट सो चाना दक्षिण गता क्लासरूम यानु मा चैलेंज सो स्कूल यानु टेक्स्ट बुक पुगता इंग्लिश है
1: यो जो
0: या और साथ साथ में गता इंग्लिश ने बुगता हिंदी अंत उर्दू अंत चाना जनो चोस लंगते गति मदर टंग पोंग यूज बना language mangmo sons zupra chana do kho public difficulties ji sons zup chana da sangata mother tongue pe ka focus bo zen zuki ta ki fru la bilingual ngati di chos system ne anu di chos area anu gar gar yodna bilingual zin ki bilingual trilingual language mangmo use bacha khas kar khuri mother tongue po zyada use bacha ta ki kho concept po kali achit nyamo nyambo english la introduce bacha ga fru chi mother tongue pe anu language po mana strong yodna kho a language loss pa samo chhi ya research do zen ki ga language ka basic language shu mother tongue po si enrich na mana tan po ka tyo na a language shu mana lo chhu yani ki sat language sak tru yani ki sabai nyin chen chu sab si yo tong yo chu mana sat language tak language mangmol stop chaus ba si fro cognitive development ha chen chu ra jan na language chana language si def yang ata any pia jen chu ki three language par bola kam as kam tin language school yana bin bin sapek sap cha so chana basic po ma ta foundational stage kana 8 class sapenga ta ngati context anu ngati la da context anu bilingual trilingual use bacha medium instruction ngati language unika focus ta cha language competition ta cha language azar cha ta ngati la da ngati oscar pioneer cha ngati kargil context anu ngata china zer khan yot balti zer khan yot purgi zer khan yot so yot pana आज फ्रुसक नता खास कर नति सिटी एरिया नु अलग अलग लैंग्वेज जर कने फ्रुन्स स्कूल जि चिया दे रिम सुत पना दोन ला ररा लैंग्वेज शुन जर चुचा सुने सुइस लैंग्वेज पियानो व्हाट्सएप एक्सचेंज बचा जर चुचा दो जो सा चुचा छाना कोन लैंग्वेज पियानो सिर्फ कोन लैंग्वेज पुचा लो छन जो लैंग्वेज कोने बो खवा आ डोमेन सुन कोन सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट अटैचमेंट सख कोन कॉग्निटिव डेवलपमेंट दो या फायदा छ छन छाना दे फेंगाती एनी पियन दसन फोकस बसन जकी मदर टंग ओ बेटा फोकस बचा मदर टंग से कोन यूज बचा gar gar nge yut zer hyos bacha dua yus bacha nge mo nge mo alang vishu nang sapcha
1: bashi doctor sa chane yene sa skas nan sap matang a kol just to sa sa matang mother language ka nep shok na zam zik cha sa ba su zhe su disco pa nu yere trasal ba sung ol chana dare di nep yong ser gya ko na matang a formula khon chu du 5 plus 3 plus 3 plus 4 zere chana du chin yang di nep nang du matang a di exam pe fi jik shi chang skap si jak su ta ju ya du min ma ek exam i warrior gna ban a free sung se phun la
0: दरअसल दो हजार सिंह अति पेडोगोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर 5+3+3+4 का सर पहला आता 10+2 पिन यो 10 साल लिखवा स्टडी बचा 2 साल स्पेशलाइज स्टडी बचा द 10+2 दरअसल रिप्लेस बसिन 5+3+3+4 को सर 5+2 दरअसल 5 साल फाउंडेशनल स्टेज द 5 5 साल पे अनुगता 3 साल कना 7 साल सपे फ्रु दे स्टेज पे का 5 साल ही फाउंडेशनल स्टेज पे का द फाउंडेशनल स्टेज ही 5 साल पे अनु पार्ट नि जो पार्ट ची पो मति प्री स्कूल या प्री स्कूल मति किंडरगार्टन जेना केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड पो दो ना फर्स्ट एंड सेकंड दो जशन फर्स्ट एंड सेकंड पो गता दी फायर फाउंडेशनल स्टेज पे का दे फाउंडेशनल पुल दंचा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी 2 साल छना स्नल लंगता 6 साल ला फ्रु पहली क्लास संग गवर्नमेंट स्कूल यानो एंट्री बाद पिन या मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल यानो केजी फर्स्ट केजी सेकंड यो मत पिन या प्री स्कूल जेरे केजी सेकंड या फर्स्ट या थर्ड यो मत पिन तो चोला लेकिन दसन एनईपी कॉन्टेक्स्ट यानो नता करिकुलम फ्रेमवर्क नी कॉन्टेक्स्ट यानो 3 साल ला फर्स्ट स्कूल एंट्री बचा प्री स्कूल इफ या 3 साल यांको केजी फर्स्ट या दसन एनईपी हिसाब इक मत जर्शन बाल वाटिका फर्स्ट बाल वाटिका सेकंड एंड बाल वाटिका थर्ड दे 3 साल पे दे फ्रू स्कूल इफ यू आर रेडी बचिन स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम स्कूल इफ यू आर रेडी बचा खो प्ले बेस खो मन खेल बचा कन्वर्सेशन बचा यहाँ पर चुचा डाइट वाइट चुचा और थक चुचा खो स्कूल इफ यू आर तैयार बचा स्कूल इफ यू आर तैयार बचा चिपाउन गाता स्कूल अनु गति home environment po na school environment po.

0: अलग है
1: यो ना
0: तास अलग इन द कंटेस्ट ना तास स्कूल यानो एक फॉर्मल टीचिंग जी चाहिए हम यहाँ तो चोज जाते हैं यम्मो यम्मो स्कूल यंग अति लैंग्वेज पो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उन या लैंग्वेज उन गा लैंग्वेज पे अनुकूल सवाक परसेप्शन दे लैंग्वेज उन्हीं बेस लंचा मैथमेटिक्स ही बेस लंचा मैथमेटिकल कंसेप्ट ही बेस लंचा फ्रूनी कॉग्निटिव थिंकिंग या कोई सोशियो इमोशनल कोई क्रिएटिव थिंकिंग या थॉट्स ही बेस पो आगे बढ़ने के लिए दे उन्हीं क्रिएटिविटी दोन थॉट उन्हीं बेस पो को ध्यान लंचा छाना फाउंडेशनल स्टेज पो पांच साल पो मन इम्पोर्टेंट इंसु छाना दे पांच साल पो छह साल संजो जमाना छह साल से पहले प्री मजे 85-90% खोए ब्रेन डेवलपमेंट छ छाना दे पांच साल मन क्रुशियल एरिया इंसु मन इम्पोर्टेंट मन खाचन एरिया इंसु दे छाना दे प्रूनी का फोकस बचिंसु माता खो खेल खेल में सीखना प्ले वे में था खेल खेल में एक्टिविटी बेस में फ्रून ला लोपशुचा फैमिलियर पता में तीक खुआ फैमिलियरिटी छचुचा ए दो एक दो ना ए बी ना या फॉर एग्जांपल अलिबे ना या काका काका ना या अति लैंग्वेजिक तो स्क्रिप्चर ना दोनी बारे अनु खुआ ब्री फिया न्यून मी फिया जर भी फिया दोनी प्रैक्टिस ना चाहो दे पांच साल तीन साल इंग आता मिडिल स्टेज चार साल इंग आता सेकेंडरी स्टेज चार साल पों आता जैसे 9, 10, 11, 12 दे चार साल पों आती सेकेंडरी स्टेज दसंग आता 11, 12 जरा अलग हायर सेकेंडरी होते तो मैं अब 9, 10, 11, 12 सेकेंडरी स्टेज इन चुके फिर 9 या मैं फाला अब स्पेशलाइज गागा एरिया साउथ जर्चिंग मेथियन लोग इंग्लिश
1: एंड अलग फील पहुंचे
0: दे फील पो 9 या मैं फाला चूज बचा सो 9 या नो क्वा बुकेज हो जन सब्जेक्टिव बुकेज यूट्यूब हां जा सोला दिस नल लखवा मिडिल स्टेज पे का खवा ओदे 9 या नो गागा सब्जेक्ट उन लेंचिन दिस सब्जेक्ट टू निबारा इंट्रोडक्शन बचा इंट्रोड्यूस बचा दिस सब्जेक्ट टू निबारा कांसेप्ट इंट्रोड्यूस बचा दिस नल लखवा तीन साल पे अनु प्रिपरेटरी स्टेशन खुआ जनरल आइडिया तांचा एजुकेशन के बारे सब्जेक्ट के बारे डोमेन के बारे सोसाइटी बारे इन्वायरमेंट बारे लैंग्वेज बारे खुआ जनरल दे इंट्रोडक्शन पाचा छा ना दिस स्टेज पर रिसर्च बेस्ड स्टेज इन चुकी माता गग स्टेज पे अनु खुआ चेंज छेनुक गग स्टेज पे अनु फ्रू थॉट पे कोई माइंड चेंज छेनुक कोई बॉडी चेंज छेनुक कोई प्रोसेस पे चेंज छेनुक कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या चेंज छेनुक दे चेंज ऐसा भी कहा चीव से करिकुलर स्ट्रक्चर पर चुत और दे चेंज ऐसा भी कहा एग्जैक्टली खुआ इंटरवेंशन ता अच्छा ना दे फिर आती 5+3+3+4 स्टेज पर चुन पांच स्टेज पर मन जरूरी चीज मैंने पांच स्टेज पे आता फाउंडेशनल पोलता फ्री पोलता तीसरी कलर से पहले फ्रून ला फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी डेवलप कर तो छा ना तीसरी के बाद खुआ कोई फर्दर स्टेडियम या कोई फर्दर साउंड लॉस पकवल समझ आसान चाहिए दसंग आता रिसर्च एजेंसी की मैक्सिमम इंडिया लोग आता तीसरी क्लास से पहले फ्रून ला कोई फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी डेवलप माशा है तो मिशा चाउस बस से फ्रून स्कूल आना ड्रॉप आउट सुन जी जमाना खुआ खुरी सवाक पो कोस इन्वायरमेंट बारे हासिल चेना या ची बारे हासिल चेना कोई लैंग्वेज पकड़ा डेवलप माशा ना द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पो तो ना बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप माशा ना खुआ बाकी यू मी फर्दर कॉन्सेप्ट फर्दर दो मतलब इन डेप्थ स्टडी बा खुआ नक्शन जेन जा चाना तीसरी क्लास पो आता इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी कि टर्निंग पॉइंट तीसरी क्लास से पहले learn to read so that he or she can read to learn pehle shes pol sab pifia de chichir go shat na do tisri class se pehle sab taki de gan altik shes po ko alop sen che har chiz anu chana de phi da sang ta ngati lada hai kargili context ta na ta 60-65% phun la fln hu ma chan su tisri class se phun la dusri class se sab mazar ba main men su silba ya koi da sang ko ngati tisri class se na phun la tyaz bachin ya ngati आती खामा आती आतामा सब दुख सुविधा खोस खुंती फ्रून लगता ना रिचन की तीसरी कला से ना खोस 60 words 60 शब्द खोआ अननून टेक्स्ट करना मान पते में कहनी है अखबार चिकना या शब्द चिकना खोआ इंग्लिश यंग का तो सिलचिन ना इंग्लिश यंग उर्दू का तो सिलचिन ना उर्दू हिंदी का तो सिलचिन ना खोआ पैराग्राफ चिक लाइन फ्रांस चिक आटुक चिक खोआ फ्यूलेंट सील बांगे ने जेर बका तो ने जेर खोआ दे मल्ला पछुत कंप्लेन बांगे ने दो इन ना खोआ तीसरी कला से ना खोआ एफएलएन पे एजुस होसि दो का तो मैन ना खुआ आने वाले स्टडी कास पोश चीन चानो खुआ दो दे स्ट्रॉंग पोश और न्यामो न्यामो मैं त्यानो खुआ मेहनत प्लस बाइंगिन मोशन एक दो सिल मोशन 99 तक खुस नंबर हो मोशन नंबर उन्हीं कॉन्सेप्ट पता हो मोशन एक पोचीन एक वैली चू दो चीन दो वैली चू दो ना दो वैली प्लस बना जमा बना चम छचिन दोन खुआ तीसरी कला से पहले दो मोशन चाना मेथी बेस पर ना लैंग्वेज बेस पर तीसरी कला से लॉस पोशन तेरे को फर्दर स्टडी
1: दे सबक पे लो चाना फ्रॉम मोमोस ड्रॉप बे सु या मन सबक सिल बे सु या मोट पो मता फेल सोंस सु चाना दरे दुंगा मस नना जक्स नता दी शेस सो मच मिजेन दुनिका नता पॉलिसी लस स्ट्रुलिंग सु चाना ये अजन चस दे मन ट्रसल बस ये दी खातु सु नगस परतांस ता मते ल जुपे का दी सवाल जिक पो मते छसा दु पजुडी मता मती आकाशवाणी

0: shi group chin dana the third language pu nga ta secondary stage ka khon chop le shi bakhsh foundational stage ka khon khon medium of instruction in language pu na khon mother tongue pe focus bo jar chin der thing na khon second language pu introduce bachin after 8th lekin nga ta da sanga tira no kasmo chi sun sunga te pehli ke na phala phun la language sun chabe hindi chabe urdu chabe english chabe so chana da sa sun ki ki तिसरी कला सब फुल ल बर्डन मतो ख्वा खुंती लैंग्वेज पे अनुक दोन गति मीडियम एडमिनिस्ट्रेशन गा लैंग्वेज पे सब चिन दे दे ग ज्यादा फोकस दसे दे ग चेस बोलो चान को क्विक कंसेप्ट उन क्लियर चान लैंग्वेज चि चान को माहिर या नि संभावित कर मारियत कर चान को कम्युनिकेशन पो एस्टेब्लिश चिन सु दे तिन को या लैंग्वेज चान सब पंगन को चुत आराम से सो दे या लैंग्वेज पो गता सब जरूरत चि मा में छ चमे सो लैंग्वेज निज गता गति लोकल लैंग्वेज पो रीजनल लैंग्वेज पो गता नेशनल या लैंग्वेज हिंदी सो या इंग्लिश सो कच सो जहां पे हमने ज्यादातर गता बाहर ल सो से कम्युनिकेट बाय लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का लैंग्वेज पो गता इंग्लिश से सो दैट्स द हिंदी या उर्दू सो चाना दो सो लंग आती गति स्टेट लेवल की गते पॉलिसी सिचुएशन की लैंग्वेज पो गचो मत आगे खेत फ्रुनिका बाडा नाम छचा फ्रुनी लैंग्वेज सबेंदुक से फ्रुन ला बाकी कंसेप्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बाकी चीज सुन कोई हेल्थ का कोई पांच डोमेन पांच या सिक्स डोमेन या कोई डेवलपमेंट है चुचिन दे सिक्स डोमेन या डेवलपमेंट छचुचा हां कोई फाउंडेशनल स्टेज पर दान चुचा और नियमो यम आता जोरो दिन किंग अति लोकल लैंग्वेज पिक अप फ्रू चम चिक महरियत का तो छाना कोई मदर टंग पिक चम चिक महरियत छाना दो खे बेज लन जिन जो बाकी लैंग्वेज यूज वे पिया छाना दे दे दे ध्यान बस दे कांग आते फोकस ता से फ्रू ल मैक्सिमम कन्वर्सेशन बचा छाना लैंग्वेज लोप शु पिया जरूरी इन सु किंग आते फैसिलिटेट बचा फ्रू ल जेर भी पिया जेर भी पिया फैसिलिटेट बचा क्लासरूम या स्कूल या सोसाइटी या यंग अति खामा एक्सपोर्ट टाक बचा लैंग्वेज कंपटीशन तक चुचा लैंग्वेज दे मने बचा कंपटीशन शौक छ चुचा फुल मेरा जर चुचा मॉर्निंग असेंबली का या बाकी क्विज कंपटीशन जी छना या जर भी कंपटीशन छना फुल जर चुचा जर चुचा जरन जरन दुख पन को लैंग्वेज पे डेवलप छ अ न्यम न्यम बो आ लैंग्वेज बो गा लैंग्वेज पे न गा टॉप प्रायोरिटी न गा जर दो दोना इंट्रोड्यूस दे न बस बस छना डॉक्टर साहब यरी ओजो सर मो यरस खास पर न ता फेसा सम एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दुना शिस सुमर मिक्जी लोसो लोसो खातु से निकल यरस मन जिप सल से न दी आकाशोनी रिंजन ने कनन सपा दी यरी समजोन सपा रगला बसे यरस प्रोजेक्ट जरा अंचन छजे छना रिंजन ने कनन न दी ग्राफ्स खोरी गोमा पॉडकास्ट से पेन अतिस दिरिंग शिस से मंग बेगा यंग दुने गेम बोम बो शिस से मिक्जी न दी मिसन मुजाम से काखरी जर्चस बो यंग शिस द जस्ट बुफुन इफ यजाम से खाचन दी लोसो लोसो खातु से निकल अतिस डॉक्टर साहब न बोल गेला बसे प्लस डॉक्टर विलायत अली सीनियर लेक्चरर डाइट कारगिल नतान बो ग्रागन चोपिंग अर्ध्यांग मजा करना तो योग में प्रोग्राम होने आंगो का अध्याय जाती खाचन खातु सुन गांग अतिर से सोख सिफिया नति में मां सुन फिया खाचन इनांग अंकुरे रिंचन में खानों नियंत्रण में थोप अर्ध्यांग मने बो यंती करना इजर ने ने सजाद अली शुजात यंग प्रोग्राम प्रोड्यूसर गुलजार हुसैन ला योग में प्रोग्राम बसक पाश अज देवाजत इजिन ये यशु खुदा नर सखमा अमानी
1: Derentes Girlux program nyan netpin dia program panem bodiring Akashwani Kargil gana prachupat pe program ne waspachams aske yomi program un kure yang entang da tuk tuk deman pungacha izin chazibos yeshu khuda narsakhmani faghriyan jai hin